ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारी प्रथम सभा आज की आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधान

0: के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का विचार, और आज का विचार विषय है अहंकार का त्याग करें। आलेख और वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
3: बाइबिल में आता है कि दंभ का अंत सदैव अहंकार में होता है और अहंकारी आत्मा सदैव पतित होती है। मित्रों, ये एक ध्रुव सत्य है जो मनुष्यों के मन का विश्लेषण करने के बाद विद्वजनों ने खोजा है। ठीक वैसे ही जैसे काम, क्रोध, लोभ के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है और क्रोध विवेक को छीन लेता है, इस प्रकार विवेकहीन प्राणी का पतन निश्चित होता है। ठीक वैसे ही दंभ के कारण उठे अहंकार से भी मनुष्य का पतन होता है। जैसे

0: रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस या बाली का हुआ। अहंकार पतन का रास्ता है, लेकिन इससे वही बच सकता है जिसने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसी बात को गीता जी में और अच्छी तरह से समझाया गया है। अध्याय 3 के 27वें श्लोक में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता मिति मन्यते। यानी जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा समन्वय किया जाता है। इस दृष्टि से अहंकार मूल जड़ है जो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से प्रहार करती है। आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो कब अहंकारियों जैसा व्यवहार करने लग जाता है। इससे बचने के लिए नाकू सिन्हा कहते हैं, व्यर्थ न बोलें, घमंड न करें, अपनी प्रशंसा कभी न करें। लेकिन अधिकांशतः लोगों को अपनी तारीफ अच्छी और मन लुभावनी लगती है, इसीलिए हम सीधे सीधे अहंकार की पकड़ में आ जाते हैं। वैसे मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी हर मानसिक कार्यविधि पर सावधान होकर निरंतर उसका ध्यान रखे, तो अहंकार जैसी भूलें स्वतः समाप्त हो जाती है। वैसे अहंकार भी कई प्रकार का होता है, जैसे धन का अहंकार, पद का अहंकार, बल का अहंकार, संपत्ति का अहंकार, कपड़ों का अहंकार, अपनी शैली का अहंकार, अपने हुनर का अहंकार, अपने बोलने की कला का अहंकार, किसी ज्ञान विशेष या क्रिया विशेष का अहंकार। पता नहीं ये अहंकार कितने ही रूपों में हमें प्रभावित करता है। ये नहीं है कि छोटे बड़े सभी लोग अहंकार के शिकार होते हैं, बल्कि अहंकार ने तो महारथियों को भी अपनी अंगुलियों पर नचाया है। उदाहरण रावण का लें, उदाहरण दुर्योधन का लें। रावण जब सब कुछ जीत चुका तो उसके मन में आया कि क्यों न भगवान भोलेनाथ को भी लंका में लाकर बसाया जाए। यह सोचकर वो कैलाश पर्वत पर पहुंचा और शिव से आराधना करने लगा, हे महादेव, आपकी कृपा से मैं विश्व विजेता बन गया हूँ। अब वक्त आ गया है कि आप भी मेरे साथ चलें और श्रीलंका में ही निवास करें। रावण प्रार्थना करता रहा, पर भोले समाधि में थे, कोई ध्यान नहीं दिया। ये देखकर रावण बड़ा परेशान हुआ और उसने सोचा कि क्यों नहीं कैलाश पर्वत ही उठा लिया जाए। यह सोचकर वह कैलाश के पार्श्व में गया और अपने हाथ उसके नीचे लगाकर उठाने लगा। कैलाश थोड़े हिले, पक्षियों में क्रंदन मच गया। अब तो उसकी हिम्मत बढ़ी और वह थोड़ा और जोर लगाने लगा। इस बार कैलाश और ऊपर उठा। शिव का ध्यान भंग हुआ, वे सब बात समझ गए। तब उन्होंने अपने पैर के एक अंगूठे से कैलाश को नीचे दबा दिया। उधर रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। वह बहुत जोर लगाए लेकिन कैलाश नहीं उठा। अपने हाथ की पीड़ा उससे सही नहीं जा रही थी। तब उसने शिव से प्रार्थना करना आरंभ किया। तब शिव ने आकर उसका हाथ बाहर निकलवाया। उस दिन रावण का अहंकार कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी बीज रूप में तो अहंकार था ही, जिसकी वजह से राम के हाथों युद्ध के मैदान में वो मारा गया, नष्ट हो गया। तो मित्रों, हमें हमेशा अहंकार जैसी बीमारी से दूर रहना चाहिए।
1: आज का विचार कार्यक्रम में अभी आपने सुने श्री प्रमोद कुमार शर्मा के विचार, विषय था अहंकार का त्याग करें। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ करते हैं, बल्कि श्री गणेश करते हैं हरिओम शरण के भक्तिमय स्वर के साथ।

श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे श्री हरिओम शरण जी की ओजस्वी वाणी में भगवान श्री गणेश का आह्वान। किसी भी शुभ कार्य और दिन की शुरुआत के लिए प्रथम पूज्य स्मरण मन को एक अद्भुत एकाग्रता और ऊर्जा से भर देता है। सज्जनों, भारतीय दर्शन में गणेश बुद्धि के देवता हैं तो कृष्ण प्रेम और भक्ति के। कहते हैं, जीवन में जब बुद्धि और प्रेम

दोनों का संगम होता है तभी सात्विकता का जन्म होता है। इस पावन सुबह में सूरज की पहली किरण के साथ जब ईश्वर का नाम लेते हैं तो वह केवल एक शब्द नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से संवाद बन जाता है। कार्यक्रम वंदना के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब समय है उस स्वर को सुनने का जिसमें ठहराव भी है और समर्पण भी। जगजीत सिंह की भक्तिमय स्वर प्रस्तुत है श्री राधे कृष्ण। भगवान कृष्ण का नाम और श्री राधा की भक्ति संसार के समस्त कोलाहल को शांत करने की शक्ति रखती है। तो आइए इस शांत वातावरण में हम भी खो जाते हैं, इस दिव्य कीर्तन में।

भक्त और भगवान इनके बीच का संबंध बड़ा ही अद्भुत है। कभी हम उन्हें सखा मानकर पुकारते हैं तो कभी एक अश्रु के माध्यम से उन्हें याद करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं प्रभु का एक दर्शन ही जीवन के समस्त विकारों को शांत कर देता है। इसी भाव को स्वर दिए हैं भावना लोनकर ने। सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप सुनिए इस सुरीली आवाज को, एक भावपूर्ण पुकार को, दर्शन दीजिए आए। इस भजन में मीरा सी व्याकुलता और एक अनन्य भक्त का समर्पण झलकता है।

श्रोताओं, अध्यात्म में एक अवस्था थी जिसे साक्षी भाव कहते हैं, जहाँ परमात्मा चुपचाप हमारे जीवन की हर हलचल को देख रहे होते हैं। कान्हा का चुप होना उनकी उपेक्षा नहीं बल्कि उनका साथ है। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा की स्वर में, कान्हा है चुपचाप।

आशा है कि सुर और भक्ति की यह त्रिवेणी आपके दिन को ऊर्जावान और मंगलवान बनाएगी। इसी भजन के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान।

0: श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बालकांड दोहा संख्या 49 से दोहा संख्या 51 के अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ।
1: रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं।

देवकी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओ, हमारी सांध्यकालीन सभा में रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती, और रात्रि 10 बजे प्रस्तुत होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। रात्रि 8 बजे प्रस्तुत होगा बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण, जिसमें वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय के होंगे, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, जबकि संयोजन श्री अमित सिंह द्वारा किया गया है। कार्यक्रम बीकानेर दर्पण रात्रि 8 बजे

0: श्रोता, हमारी इसी सभा में अब से कुछ ही पलों में यानी कि 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें विषय रहेगा पक्षियों से फसल का बचाव। वाचक स्वर हैं श्री बजरंग सारस्वत का। लोक भजन आप सुनेंगे प्रातः 6:50 पर। कार्यक्रम सुप्रभात का प्रसारण होगा प्रातः 7 से, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, महाराणा प्रताप जयंती और गोपाल कृष्ण गोखले जयंती। कार्यक्रम सुप्रभात में प्रातः 7। इस सभा में फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर। जय जवान कार्यक्रम सुनेंगे आप प्रातः 10 से। हेलो बीकानेर यानी कि फोन इन पर आधारित एक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 11 से। आज की सूत्रधार रहेंगी श्रीमती कोमल तनेजा, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा की और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। 11 हेलो बीकानेर। श्रोताओं, सुगम संगीत आप सुन सकेंगे इस सभा में 8:45 पर। लोक संगीत का लुत्फ आप ले पाएंगे प्रातः 9:10 पर, जबकि प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में किशोरी अमोनकर का गाया राग अहिर भैरव में ख्याल आप सुनेंगे प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे फिर से 12:40 पर और 2:30 पर। बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत 1:05 पर। युवाणी का प्रसारण होगा संध्या 5:05 पर। श्रोताओं, ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज विषय है पक्षियों से फसल का बचाव। वाचक स्वर है श्री बजरंग सारस्वत के।
1: देश में मिलनारा 300 किस्म रह पक्षिया में कई फसला और फड़ा रे गोदामा ने और मंडिया में दाने रो घणो नुकसान करे है। आज आपा जाना के आपा किया कर पक्षियां सु फसल रो बचाव कर सका हा। तो सबसे ज्यादा हानिकारक पक्षी है जको गणखरी सगड़ी फसला ने और फड़ा रो नुकसान करे है। इरे सागे ही पैदावार माथे भी असर पड़े है और ओ सूरजमुखी सारू घणो नुकसान पुगावे। आ पक्षियां रे बचाव सारू न्यारा न्यारा तरीका रो प्रयोग करियो जावे है, जिनसु फसल रो भी नुकसान नहीं होवे और पक्षियों रो नुकसान भी नहीं।

0: गणपत लाल डांगी और पार्टी के स्वर में अभी आपने सुना ये लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोह आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रिणः, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षास्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्ताव

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर इस चहकती सुबह और नई उम्मीदों के साथ मैं आपका दोस्त मालकोंस, उम्मीद है आप

सभी के घर आंगन में खुशियों की धूप खिली होगी। और बात करें चाय की, तो चाय की चुस्की के साथ आज के इस सफ़र के लिए आप पूरी तैयार भी होंगे। आज का ये विशेष कार्यक्रम या अंक है, अंक समर्पित है इतिहास के नायकों और उन नन्हे पंख वाले मेहमानों को जो सरहदें नहीं जानते। तो चलिए आज की सुबह का एक मीठा सा आगाज़ करते हैं, एक बेहतरीन शुरुआत इस गीत के साथ।

श्रोताओं, रात के हम सफर तो अब अपने घर को जा चुके और झूमती हुई सुबह का हम स्वागत कर रहे हैं आपके साथ कार्यक्रम सुप्रभात में। और जो हम सफर, और कह सकते हैं कि इस आकाश के हम सफर जो हैं, उनकी भी बात जरा कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। यह दिन हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो है अभी मई का दूसरा शनिवार, तो हम मना रहे हैं विश्व पक्षी दिवस। मन करता है ना, पंछी बनूं, उड़ती चलूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूं दुनिया के चमन में। तो ये जो एहसास है अपने पंखों को फैलाने का और इस आसमान में उड़ान भरने का, ये अपने आप में अलग ही है। निश्चित रूप से मनुष्य की योनि हमें सर्वश्रेष्ठ लगती है, पर कई चीज़ें हैं, कई कमियां हैं जो हमें प्रतीत होती है। जो हमसे कुछ आगे हमें फील होता है वो है हमारे पक्षी प्यारे से, और उसमें भी कुछ प्रवासी पक्षी जो कितनी लंबी उड़ान भर लेते हैं। श्रोताओं, हम उन पक्षियों के प्रति आज जागरूक हो सकें, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है, जो सीमाएँ तोड़कर हज़ारों मील का सफ़र तय करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आर्कटिक टर्न नाम का एक पक्षी है जो दुनिया में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला प्रवासी पक्षी है। यानी कि एक पूरा आर्क वो टर्न कर लेता है, जो हर साल

से दक्षिण ध्रुव तक लगभग 70,000 किलोमीटर की यात्रा लगभग कर देता है। और बात करें हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान में जो आने वाली कुर्जा पक्षी, नाम सुना ही है आपने, असल में डोमेसाइल क्रेन इसे कहते हैं। ये पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये कीटों को नियंत्रित करने और बीजों के प्रसार में मदद करते हैं। तो आपने वेगटेल का भी नाम सुना होगा, एक छोटी सी चिड़िया जो अपनी पूंछ को ऊपर नीचे करती रहती है, और हमने अपनी किताबों में भी उसके बारे में पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे, साइबेरियन क्रेन का तो क्या कहना, और गिद्ध जो हमारे बीकानेर के जोड़बीड़ी क्षेत्र में जिनका बसेरा होता है। तो ये सभी पक्षी हैं जो एक देश से दूसरे देश बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के बड़े आराम से आ जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक एहसास दिलाता है कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, या फिर ये हमसे कई मीलों आगे हैं। और कुछ हद तक कह सकते हैं कि प्रकृति ने सभी को कुछ ना कुछ देकर नवाजा है। तो इनके इस विशेष योग्यता और इनकी इस विशेष आज़ादी को सलाम करते हुए सुनते हैं एक बेहतरीन नगमा।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

सुरों के सिलसिले के बीच अब बात करते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास की। आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है और हम मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। श्रोताओं, इतिहास का वह प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था, जहां प्रताप ने अकबर की विशाल सेना का सामना किया था। उस समय महाराणा प्रताप का भाला करीब 80 किलो का और उनका कवच 72 किलो का हुआ करता था। जरा सोचिए कि जिस वजन का आधा हम उठा नहीं सकते, वो दिन भर उतना पहन के और वो रणभूमि में डटे रहे अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए। उनके निष्ठावान घोड़े चेतक की वीरता की कहानियां तो आज भी हमें रोमांचित कर देती हैं। उन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष किया, लेकिन अपनी मातृभूमि का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया। और बात महाराणा प्रताप की है तो राजस्थान के प्रत्येक अंश में, यानी कि रेणुका में भी वीरता झलकती है। ये धरती ही वीरों की है। यहाँ युद्ध को उस तरह से नहीं देखा जाता

कि ये एक मानवीय भूल है। युद्ध को उस तरह से भी देखा जाता है कि जहाँ आवश्यक है वहाँ युद्ध भी आवश्यक है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी हो या बात करें अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जो लालायितपन है, जो हमारे राजस्थान की रणभूमि में भूमि से ही उपजे हैं, यहाँ की मिट्टी में, वो बात है कि युद्ध को कभी भी कायरता से नहीं देखा जाता। तो ऐसे ही वीर भूमि से जुड़े एक गीत से करते हैं इस सुबह का आह्वान, क्योंकि आरंभ है प्रचंड।

प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।

0: है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है।

जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: श्रोताओ, आज का दिन एक और महान व्यक्तित्व को याद करने का है। आज 9 मई को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उदारवादी नेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले की भी जयंती है। गोखले जी का जन्म 1866 में हुआ था। वे केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी ने उनके बारे में कहा था कि गोखले एक क्रिस्टल की तरह शुद्ध और एक शेर की तरह बहादुर थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। श्रोताओं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये एक संदेश है कि आज के युवा हो चाहे देश के कोई भी नागरिक हो, उन्हें अपने देश की सेवा के लिए किसी अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले जी की ये सीख दिखाती है कि अपने देश को महान और सबसे बड़ा बल्कि विश्व गुरु बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी मिलकर अपना योगदान दें। जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही है, इस देश ने जिन ऊंचाइयों को कभी छुआ था, कभी विश्व गुरु के नाम से प्रख्यात रहा, आज पुनः उस गौरव को महसूस करने का दिन है। तो सुनते हैं एक और ऐसा ही गौरवमयी गीत, जब जीरो दिया मेरे भारत ने।

श्रोताओं, अब घड़ी कर रही है इशारा कि आज का ये सफ़र यहीं समाप्त होना चाहिए अब। तो उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में आपको आनंद भी आया होगा और ज्ञान भी मिला होगा, और कहीं ना कहीं हमने वो चर्चा की जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है, और हम हमारे आत्मा हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है, और इस प्रकृति हमारे आवरण आसपास के जो जीव जंतु उनके लिए भी ज़रूरी है। तो हम सभी का ध्यान रखें और खुश रहें। तो कल फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। अब आज्ञा दीजिए आपके दोस्त मालकोंस को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, संगीत जब दिल के तारों को छूता है तो शब्द अपने आप गुनगुनाने लगते हैं। आज के सफर का आगाज करते हैं साल 1971 में

विजू शाह के संगीत से सजी एक बेहतरीन फिल्म तेरे मेरे सपने के इस गीत के साथ, ए हरी हरन और साधना सरगम का है स्वर। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है क्योंकि ये गीत बताता है कि जब कोई दिल कहता है तो कोई दिल सुनता है।

स्वतः वक्त है माहौल में थोड़ा सा जादू घोलने का और थोड़ा जोश डालने का। तो साल 2000 में फिल्म आई थी तेरा जादू चल गया। इस फिल्म का संगीत बेहतरीन संगीत उस्ताद इस्माइल दरबार साहब ने कंपोज किया था और

में फिल्म आई थी तेरा जादू चल गया। इस फिल्म का संगीत बेहतरीन संगीत उस्ताद इस्माइल दरबार साहब ने कंपोज किया था और इन्होंने अपनी खास धुनों से हर दिल को धड़कने पर मजबूर किया था। उस वक्त का दौर था संगीतकार इस्माइल दरबार का, तो अगर ऐसा बेहतरीन संगीत हो, सोनू निगम की बेहतरीन आवाज़ हो, तो निश्चित रूप से थिरकने को मन करेगा। और बात कव्वाली की हो तो शब्दों का भी जो जाल है उसमें हम आपको फंसाने जा रहे हैं। तेरा जादू चल गया, कयामत हो।

श्रोताओं, अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये बात करता है उस बेफिक्री की जब इंसान सब कुछ हार कर भी खुद को जीता हुआ महसूस करता है, और कह सकते हैं कि जब ऐसा आनंद होता है तो 56 तारे तोड़कर भी इंसान नाच उठता है।

श्रोताओं, अब वक्त है थोड़ी देर ठहर जाने का। और ज़िंदगी की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है, एक एहसास है, यानी कि प्रेम, उसकी गहराइयों में उतरने का। दोस्तों, संगीत की दुनिया में जब A.R. रहमान की बात होती है तो एक रूहानी सुकून अपने आप महसूस होने लगता है। फिल्म किसना का जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये गीत प्रेम की उस पराकाष्ठा को दर्शाता है जहाँ वक्त ठहर सा जाता है। आपको इस गीत में उदित नारायण की आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप महसूस कीजिएगा इसमें वो मुकेश

0: का ज़माना भी आपको महसूस हो जाएगा, और मधुश्री की मखमली आवाज़ के साथ आपको लता मंगेशकर का आनंद भी मिलेगा। ये एहसास है जो आप महसूस करना चाहेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। इन दोनों स्वर सम्राज्ञियों ने इसमें एक जान फूंक दी है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान के इस हंसी पल को जी लेना चाहिए, यही असल मोहब्बत है। तो आइए रूह को छू लेने वाले इस संगीत के साथ डूब जाते हैं इस नगमे में। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हों कल कहाँ।
1: कभी कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।

0: श्रोताओं, प्रेम और यादों की इन्हीं मीठी लहरों के साथ अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि आज के इस सफर को यहीं विराम दीजिए। तो फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के बजने वाले हैं 8 और अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित

0: संसदीय दल के नेता सवेंद्र अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल

0: मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा

0: करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की।
1: पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून। ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Uncertainty continues in Tamil Nadu government formation, cites the Hindu. The Indian Express quotes Rajnath Singh describing Operation Sindoor as short duration, deep penetration and high impact operation under the headline Operation Sindoor showcased our capabilities ethos. China admits backing Pakistan during conflict with India, writes the Pioneer. SC raps Punjab police for letting off drug sharks, cites the Tribune. US awaits Iran response to peace proposal as Gulf fighting flares up, reports the Indian Express. The Asian Age, in an exclusive titled For Both US and Iran, Peace the Only Choice, writes that the reality of the war is that the two major combatants need peace and it is up to the US to rein in Israel and its action in Lebanon. The only hope is negotiations will begin in earnest during another 30-day ceasefire as envisaged in the latest peace plan. And finally, Google explores major AI infra investments in India, notes Financial Express. Elaborating, tech giant Google is exploring investment opportunities in India across AI as well as of service and drones. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Suvendu Adhikari to take oath as first BJP Chief Minister of West Bengal this morning. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah to attend the swearing-in ceremony. Uncertainty continues over government formation in Tamil Nadu. Lieutenant General N.S. Rajasubramani appointed new Chief of Defence Staff. IMD forecasts heavy rainfall over Keralam, South Interior Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry during next 2 days. And in football, India scripts history by qualifying for AFC Under-17 Women's Asian Cup quarter-finals for the first time. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सौरभ। सौरभ कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक राजस्थानी कहानी। कहानी का शीर्षक है मोडी गमगी। कहानीकार हैं डॉक्टर रेणुका व्यास। तो सुनते हैं कहानी मोडी गमगी।
3: पोरो महीनो अदित वारी ढलती दुपारी झाड़ा झड़का नावा धोवा और चौका बासण सलटार जद में तावड़ो सेकंड ने लॉन माए पुगी उन टाइम सूरज जी चारों क्यानी परसरियोड़े तावड़े रे थान ने सावटर आपरे आथुणी घर कानी बावड़न रो मन बनाए चुके हा। बूलसू तावड़े रो एक टुकड़ो लॉन रे खूणे माए अटकोड़ो रह गयो हो। उन्हीं ने बोचण सारू में कुर्सी घसीटती इं लंफी जिया टाबरिया कटियोड़े किन्ने ने लुटन सारू लफे। इन तावड़े ने मैं रत्ती भर भी गवावण ने तैयार नहीं। हामले मुड्डे बाखे पग पसार कुर्सी री पूठ माते माथो टेर मैं मारी माँ आंखियां मूंद लीवी। घर गृहस्थी री महाभारत माए अलझोड़े और दिनुगेसु ठंठरी जोड़े डील ने तावड़े रो बो नायो नायो सेक चोखो लाग्यो। अबार मैं चैन री दो सांसा ही लीवी ही कि मेन गेट री कुंडी खड़की जाली माए सु झांकियो तो ठा पड़ियो कि कोई मांगण आली है। एकर तो मन होयो कि ना फेर दूं पण बीजे ही मन ही माए सु कोई बोलियो अरे कोई भूखी थी सी हुई सके जार देख तो सही। मैं झट करती उभी हुईगी बठे सुई ठहर आऊं कहवती मैं घर माए लगगी। पाछी बावड़ी जने मारे हाथ में चार एक रोटियां एक सोग रो उणा माथे मूड़ा रो साग और एक नाय पानी रो जग हो। बारे दो जण्या उभी ही एक 35 एक साल री पाक्योड़े रंगरी लुगाई और दूजी 8-1 बरसा री छोरी। लो हाथ मुंडो धोलो और दोपारो कर लो मैं कियो। लुगाई ढतरणी तैयार होगी उंडी भूखी आंख्या मारे हाथा कानी देखती बगत बिलड़ी री आंख्या दें चमके ही। होठा माते जीव फिरावती बाबा ने बारंबार आला करे ही ले थूई आ जा मैं छोरी ने हाथ धोवण सारू इशारो करती कियो। हाथ धुवाती टाइम मैं उनने गौर सु देखियो मक्की रे भुट्टे सु लिपट्योड़े फूसिए जीसा सोनलिया पलकलडा केस धूल सु भरियोड़ो चिकट मुंडो गोल गोल कंचे जिसी दो निर्दोष आंखियां और पतला सूखा अदर तन माथे फगत एक मैली फाटियोड़ी घगरी और उभाना पग मारे डील माए ठंडी रो लहर को सूठियो। हाथ होया पछे छोरी मुड़कती मचकती आपरी मां सागे जीमण लागी। मैं लॉन्ड्री कुर्सी गेट कानी खींच लेवी और बठई बैठ गई। छोरी गोरी और मनमोहनी।

सी ही। जीमती जीमती अजय बा मारे काने देखती मुड़के ही और मैं भी। मुड़क रो उत्तर तो मुड़क सु ही देवनो पड़े। साच ही कहवे सैना कि मुड़क एक इंसान ने दूसरे इंसान सु जोड़न नालो पुल हुए। जिम्या पछे लुगाई हाथ जोड़न लागी तो मैं पूछो कठे रे वो थे। लुगाई पूरो हाथ कोल आगुण कनी सारो करियो जकेरो मतलब हो बठी ने बहुत दूर। बाकी केवण ने मुंडो भी खोलियो पण कंठा सु आवाज नी निसरी। फकत अणखावणो सो सुर निसर रह गयो। छोटरी छटतणी आप मारी बात सांभी और बोलली बडोडे नाले कने माँ शर्मिंदा सी हुई गी। आ थारी माँ है? मैं छोरी सु पूछो। हाँ माए नाड़ हिलाई और लुगाई रो पल्लो झाल उनसु चिपर उभी हुईगी। उनके चेहरे माथे मधरी सी मुड़क ही। उनने देखते थका मने गाय कने उभी बाछड़ी री छिप याद आएगी। माँ बार बार हाथ जोड़े ही। थारी माँ बोले को नहीं कही? मैं माँ का नी इशारो करती छोरू सु पूछो। ना अजय बा घगरी रो घेर जालोड़ी गोल गोल घूमे ही। क्यों गूंगी है कहीं? मैं अब काले साफ साफ उत्तर सारू जोर देर पूछो। छोरी चिमकी। मारी आंखिया मैं डरू फरू झांकती बा जाने सावचेत सी उगी और झट करती अपनी माँ रो हाथ झाल टूरन लागी। ए ठहर सुन तू सरी काई ना वे थारो? मैं दो पावड़ा आगी ने राख लारे सु हेलो पाड़ती पूछो। छोरी थमी और मुंडो घुमावती बोली मोडी। मोडी? हाँ मोडी कहती बा भाजर आगी ने जावती आपरी मारे लारे हुईगी। पण मने जाने विश्वास ही नहीं हुयो। मैं एकली उभी फेरू क्यों मोडी? पण इनने पछे तो वो मोडी शब्द मारे मन में कठे अड़ग्यो। थोड़ी ताल पहले रो मारो सिगड़ो उमाव हवा हो गयो। लाग्यो हीरे भीतर सो की उलट पुलट हो गयो है। कीनी घाण मान मथाण माए उलझोड़ी मैं कुर्सी सागे खुद ने घसीटती कद घर माए बावड़ी मने ठाई नहीं पड़ियो। घड़ी सिंझारी पांच टणकावे ही। वीरेंद्र जी और टावरा ने घरे आवण माए अबार घंटा भर टेम ही। तावड़ो जावते ही ठारी बदगी ही। मैं चाय पनार पीवी और आराम करण ने सिरक माए बढ़गी। सोचो बे बावड़े जताई एक झपकी ले लूं। पण झपकी तो दूर आंखें मैं बटी कोनी पड़ियो। विगतरा कई पाना एकांत मन खुलन लाग गया। उण माए सु एक पानो मोडी रे नामो भी हो। मारी उम्र उन टाइम कोई दस एक बरसा री हुसी। मारी चार भाईलियां सागे मैं आखे दिन रमती रहती। चाहे मदारी रो खेल हुओ के जादूगर रो जादू के कोई मेड़ो मगरियो मैं मारी भाईलियां सागे एक ही मौको नहीं छोड़ती। इनारे पछे भी मारे मन बैलावरो एक औरों साधन मारे बास माए हो और वो हो मारे बास री गैली। हाँ गैली सगला बिने गैली जी तो कहता। बास रे चौगान रे परली पार सारण कानी एक सूनी सी गली माए रहती। कोई टाबर भूले सुई उनकानी नहीं जाव तो डर लाग तो गैली सु। गैली हफ्ते दस दिन माए आप ही मारे चौगान माए आ धमकती। जके दिन बा आवती बी दिन अणु तो रोड़ो रपो मचतो। जे कोई टाबर गैली ने गैली कहर चिगा देव तो के भाटो बगार छेड़ देव तो बा किणी रे ठहराया नहीं ठहरती। फिर तो रूआ कूका गाली गलोच भाटा दगड़ की बाकी कोनी रेव तो राफड़ करया पछे घंटा दो घंटा बाए बा आपे आपरी गैल बावड़ जावती। हरमे सिया ही हो तो कोई बिचाले नहीं आव तो सगड़ो शो गैली रे हाथ में ही रेव तो। मैं टाबरिया किणी घर रे छात माथे सू कि किणी रे दरूजे रे लारे सू लुक्योड़ा गैली रे उन घमसान ने देखता। एक तरह रो रोमांच उनने देखण रो भय इचरज और खिंचाव सु रलिड़ो। गैली सागे एक सांवली सी छोरी भी आवती मारी उम्र रे लगे टगे। लोग उनने गैली री बेटी कहता। पण खास बात है कि गैली री बेटी गैली नहीं ही एकदम ठीक ही। पण ठा क्यों नहीं लोग उनरो नाव मोडी राख छोड़ियो हो जबकि उनरे माथे ऊपर अच्छा खासा खेसा एकदम झीतरिये जिसा बाम आपरी मारे लारे लारे घूमती रहती। एक दिन री बात सिंझारो टैम गैली चौगान माए अणुती राफड़ मान रखी ही। भाटो चक्योड़ी बा टाबर रो खोपड़ो खोलन ने तैयार ही कि चाण चके मोडी सामने आएगी और गैली रो हाथ झाल लियो। ठानी कहीं समझायो गैली ने कि गैली हाथ रो भाटो हेठे नाग दियो और मोडी उनने बोलावण देवती पूठ माते हाथ फेरती होले होले आपरी गली माए लेगी। सगड़ो जांचो इया रो इया रह गयो। मारे तो अचरज री सी भी नहीं है। बस उन्हीं दिन सु मोडी मारे सारू हीरोइन हुईगी। उन रात माँ ने सोती टाइम मैं माँ ने पूछो माँ मोडी

यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। शुभारंभ करते हैं भूपेंद्र सिंह के स्वर में इस गजल के साथ। अपने जज्बात को मैं नाहक ही सजा देता हूँ।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं स्वाति नाटेकर को। आज किसी ने बातों बातों में जब उनका नाम लिया, बहुत ही प्यारा गीत।

0: इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सदस्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता मंचों और स्थायी लोक अदालतों सहित कई स्तरों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रदेश में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा ने किया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि लोक अदालत के लिए 479 बेंच का

0: गठन किया गया है। इनमें 7,77,000 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। कल जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई सैन्य रणनीति के साथ भारत के सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच कमांडरों से भविष्य के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। उन्होंने AI, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षित संचार नेटवर्क को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दो दिन की इस कॉन्फ्रेंस में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर मंथन किया गया। वहीं नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्री शेखावत कल जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इटली के वेनिस में आयोजित ला बीएनएल में भारतीय कलाकारों की भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में से एक है। इसमें भारतीय कलाकारों की भागीदारी लोकल से ग्लोबल बनने की दिशा में अहम है।
2: भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। न केवल ध्यान आकर्षित किया अभी तो भारत का पवेलियन वहाँ आज इटली में और देश भर के आर्ट लवर्स के बीच में चर्चा का केंद्र बना। भारत की सहभागिता के चलते हुए भारत के आर्ट लवर्स उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के आर्ट लवर्स का ध्यान आकर्षित होगा।
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज और कल दो दिन दो दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ग्राम 2026 के तहत कल हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए गए। ये समझौते राज्य में विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए किए गए इस बिजनेस मीट में निवेशकों, उद्योग जगत और एग्री टैंक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीट को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे अधिक मजबूती के साथ लागू करना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में गेहूं खरीद के लिए 25% अधिक टोकन जारी करने और मंडियों में पड़े गेहूं के उठाव के लिए पर्याप्त संख्या में रैक लगाने के निर्देश दिए। श्री बिरला कल कोटा बूंदी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FCI सहित सभी खरीद एजेंसियां गेहूं लेकर खरीद केंद्र में आए किसानों की तुलाई का काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीद का वर्तमान लक्ष्य पूरा होने के बाद भी अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाना और भंडारण की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ और NCCF के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी

0: के बाद दो प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। कल चिकित्सा आयुक्त बीएल गोयल के दौरे और प्रारंभिक जांच के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में देर रात एक चिकित्सक सहित तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यूटीबी में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि एक अन्य चिकित्सक सहित दो नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं वार्ड प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अस्पताल का दौरा कर दवाओं और ऑपरेशन प्रक्रिया के रिकॉर्ड की जांच की है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर में करीब 100 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि ढाणी गैसकान में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
1: ढाणी गैसकान गांव से यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली। लगभग 45 ग्रामीण और 34 बच्चे यहाँ वोमिटिंग की और पेट दर्द की शिकायत के साथ यहाँ आए थे। इनमें से अभी तीन बच्चे अपने एडमिट है, बाकी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं और बाकी ग्रामीण जनों का इलाज चल रहा है। ऐसे ही लगभग 14 बच्चे और 16 ग्रामीण ये सापुरा भी दिखाने गए थे, वहाँ पर उनके इस शिकायत के आधार पर तो CBO साहब को मैंने वहाँ भेजा था। अभी तीन बच्चे वहाँ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं और सबका इलाज करवाया जा रहा है।
0: राज्य के अधिकतर स्थानों पर कल दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 11 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 9:11 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समंदर खां, सत्तार खां, रमजान खां पार्टी के गए इस लोकगीत के साथ, केसरियो हजारी गुलरो फूल।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आखिर में आइए सुनते हैं कल्पना और गनी को नखरो छोड़ दे भाभी।

नखरों छोड़ दे, इसी गीत लोकगीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक किशोरी अमोनकर का गायन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनवाते हैं आपको किशोरी अमोनकर का राग अहिर भैरव में गाया ख्याल, विलंबित रचना के बोल हैं रसिया महारा और द्रुत रचना के बोल है बनरा मोरा।

विदुषी किशोरी अमोन करके स्वर में अभी आपने सुनी राग अहिर भैरव में ख्याल। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोल हमारो चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं किशोरी अमोन करके स्वर में ही मीरा भजन सहेलियां सजन घर आए। जुगलबंदी कर रही हैं नंदिनी बेडेकर, तानपुरा पे संगत कर रही हैं संगमित्रा बागची, वायलिन पर संगत कर रहे हैं मिलिंद पालकर और हारमोनियम पर हैं महेश कुमार। तो सुनते हैं मीरा भजन किशोरी अमोनकर के स्वर में।

ये थी विदुषी किशोरी अमोनकर, प्रस्तुत कर रही थी मीरा भजन सहेलियां सजन घर आए। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

जय जवान सुनने वाले सभी फौजी भाइयों और मेरे प्यारे श्रोताओं को मालकोंस का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है हमारे उन वीरों प्रहरियों को जो सरहदों पर तैनात रहकर हमारी खुशियों की हिफाजत करते हैं। दोस्तों, आज हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे और गर्व करेंगे अपनी भारतीयता पर। आज के इस जोश भरे सफ़र का आगाज़ करते हैं फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के इस बेहतरीन गीत के साथ, जो दुनिया के हर कोने में हमारी पहचान को बुलंद करता है। विशाल शेखर का संगीत और इसे अपनी दमदार आवाज़ों से सजाया है नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन ने। सुनते हैं हम इंडिया वाले।

0: 150 साल पहले लिखा गया ये अमर गीत आज भी हम सब के दिल में देशभक्ति की एक ही धुन जगाता है, वंदे मातरम।
1: इस ऐतिहासिक अवसर पर 15 नवंबर तक राजस्थान सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सामूहिक वंदे मातरम गान, प्रभात फेरियां, स्कूल कॉलेज में कल्चरल इवेंट्स, पेंटिंग्स एंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, स्वच्छता ड्राइव्स और अनेक सार्वजनिक स्थानों पर विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं।
0: आइए अपनी आवाजों को एक साथ मिलाकर देश के इस गौरव गान को नमन करें और देश की पहचान को और भी मजबूत बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जब फौजी भाई अपने घर लौटते हैं छुट्टियों में, मुश्किल से पहुंचते हैं और मिलते हैं अपने जीवन साथी से, तो एक बार की जो कश्मकश दोनों के बीच रहती है, कुछ ऐसा ही बयां करता था ये गीत। 1942 ए लव स्टोरी से लिया था हमने ये गीत, कुमार शानू के स्वर में, आर डी बर्मन का बेहतरीन संगीत और जावेद अख्तर के बोल।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
4: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
3: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का

90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

जय जवान कार्यक्रम में अब बढ़ाते हैं थोड़ी सी धड़कने और कुछ थिरकने को मजबूर करते हैं आपको। 36 चाइना टाउन, जिसका संगीत उस दौर में हर तरफ छाया हुआ था, इस फिल्म का एक ऐसा गीत जो आज भी अपनी खास बीट्स और हिमेश रेशमिया, सुनिधि चौहान के सिग्नेचर स्टाइल गायकी के कारण खूब पसंद किया जाता है। तो सुनते हैं ये बेहतरीन नगमा जो आपको झूमने पे मजबूर कर दे।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक मिडिल समय का गीत, आजा मेरी जान फिल्म का है नाम, और ये गीत आपको पुराने दिनों की याद ताज़ा करा ही देगा। एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ ने इस गीत में एक अलग ही मिठास खोल दी है। तो ये गीत उन कोमल भावनाओं की बात करता है जो हर दिल के करीब होती है, और कहीं ना कहीं हमारे फौजी भाई भी याद करते हैं कि जब वो अपने प्रियतम को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो कैसे गाते हैं कि आजा मेरी जान।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: 10 लाख की लॉटरी, मुझे
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये थे सुखविंदर सिंह और वसुंधरा दास। फिल्म का नाम अक्स, संगीत अनु मलिक का था और इस गीत को लिखा था गुलजार ने। बढ़ते हैं जय जवान कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। श्रोताओं, ये गीत है फिल्म एंथनी कौन है, फिल्म का नाम हिमेश रेशमिया और के की आवाज़ें हैं। लिखा है इसे समीर ने और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

श्रोताओं, अब बात करते हैं उन अटूट रिश्तों की जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते हैं। दोस्तों, एक जवान जब अपनी पूरी शिद्दत के साथ सरहद पर खड़ा होता है तो उसके पीछे उसके परिवार का वो प्यार और विश्वास भी होता है जो उसे फौलाद बना देता है, और उसका तो पूरा देश ही पूरा परिवार होता है। साल 2007 की फिल्म अपने, इसका एक शीर्षक गीत है जो रिश्तों की अहमियत को बड़े ही सुंदर ढंग से बयां करता है। हिमेश रेशमिया, क्या दिल छूने वाला संगीत, और इसे अपनी रूहानी आवाज़ दी है सोनू निगम और जयेश गांधी ने। वही जयेश गांधी जिसे आप कृष्णा के नाम से भी शायद जानते हैं। ये गीत हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और अपनों का साथ एक तरफ। तो आइए अपनों को समर्पित सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत, बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने ही होते हैं।

अपने तो अपने होते हैं, वाकई रिश्तों की ये गर्माहट हमें हर चुनौती से लड़ने का हौसला देती है। दोस्तों, इस भावुक और जोश भरे नगमे के साथ अब समय हो चला है कि मैं आपसे विदा लूँ। आज जय जवान के इस अंक में हमने संगीत के जरिए हमारे उन वीरों प्रहरियों को सलाम किया जिनकी वजह से ही हमारी सुरक्षित सुबह है और रातें सुकून भरी है। जाते जाते बस यही दुआ कि वतन के इन रखवालों और उनका जज्बा हमेशा सलामत रहे, उनके अपनों का साथ हमेशा बना रहे। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। आज के कार्यक्रम की सूत्रधार हैं श्रीमती कोमल तनेजा। प्रस्तुति है श्री रेवंतराम लेघा की। संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने। तो सुनते हैं हेलो बीकानेर।

0: स्वागत कार्यक्रम हेलो बीकानेर सुनने वाले सभी श्रोताओं का। इस कार्यक्रम में संयोजन है श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेघा की। और आज का कार्यक्रम हेलो बीकानेर लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बात से कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। जी बिल्कुल श्रोताओं, यही मुस्कुराहट आपके चेहरे पर सदा कायम रहे, यही प्रयास आज हम करते हैं कार्यक्रम हेलो बीकानेर के माध्यम से। हम अपने श्रोताओं से रेडियो और बचपन की कुछ यादें साझा करते हैं और जानते हैं कि रेडियो साथी रूप में कब आया उनके जीवन में। और अब रूबरू होते हैं हमारे श्रोताओं से, बात करते हैं हमारे आज के पहले श्रोता से। हेलो
1: जी। हेलो बीकानेर फोनिंग प्रोग्राम।
0: जी बिल्कुल सही जगह आपने कॉल किया है, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: धन्यवाद जी। मैं जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर अशोक कुमार शाही। और
0: जी अशोक जी बताइए कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी। मोहम्मद अजीज की आवाज काफी दिनों से नहीं सुनी, मैं कहा वो सुनवा दीजिए।
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल अशोक जी, हम आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे, उससे पहले क्यों ना आपकी बचपन की यादें ताजा कर ली जाए। जी बताइए कुछ है, कोई ऐसी बात बताइए जो रेडियो से भी जुड़ी हो और आपके बचपन से भी जुड़ी हो।
1: देखो रेडियो से तो जुड़ी है कि पहले ये बिजली से चलने वाले रेडियो होते थे, तो वो हमारे घर में दादाजी, हमारे पिताजी, फिर हम लोगों को, हमारे अंकल से थे उनको और बुआओं को, सबको इतना शौक था रेडियो का कि मैं बता नहीं सकता।

0: पहले तो बीकानेर में स्टेशन नहीं था, तो फिर हम रेडियो सिलोन और दूसरे स्टेशन बाहर के सुना करते थे
1: जी।
0: उसमें एरियल लगाना पड़ता था, बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी
1: जी जी। फिर हमारा आकाशवाणी बीकानेर आ गया।
0: हाँ, बीकानेर रेडियो स्टेशन जब इंस्टॉल हुआ तो यहाँ पे गाने आने लगे, दिन में भी सुने जाने लगे और रात को भी सुनने के इच्छुक रहते थे।
1: जी बिल्कुल अशोक जी, मतलब कि कह सकते हैं कि बचपन से ही रेडियो आपका साथी रहा है और आप स्कूल टाइम से रेडियो से जुड़े रहे और फिर आगे आपने जॉब किया तभी वो आपका साथी रहा।
0: अभी तक हम रेडियो से
1: जी जी
0: हुए
1: जी
0: हाँ। दूसरे स्टेशन से भी हैं और बीकानेर आकाशवाणी तो आपका मुख्य है
1: जी। आकाशवाणी बीकानेर के ध्वनि तरंगों के माध्यम से ही आपकी और हमारी बातचीत हो रही है और आपने बहुत अच्छा बताया कि भी रेडियो आपका संगी साथी अभी तक बना हुआ है और ये संगी साथी आपका ऐसे ही ताउम्र बना रहे यही हम उम्मीद करते हैं। और अब बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: वो बताया मैंने जो मोहम्मद अजीज की आवाज में है नगीना का, वो गीत सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल,
0: कुछ याद रहता नहीं।
1: चलिए अब आपकी फरमाइश को हम पूरा करते हैं, सुनते हैं फिल्म नगीना का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद। मैं राजेंद्र बिडवालकर वृंदावन कॉलोनी जयपुर रोड से निवेदन कर रहा हूँ।
0: जी राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम।
0: कि आज आप थोड़ी सी आपकी पुरानी यादें हमसे साझा कीजिए, जिसमें बचपन और रेडियो का कुछ कोई भी वाक्य आपके जहन में हो उसे हमसे शेयर कीजिए।
1: बचपन, हाँ ये तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। बचपन से ही, मतलब आज इतने साल हो गए, 40-50 साल हो गए, हमारे रेडियो ही का ही बड़ा शौक है। रेडियो ही बहुत सुनता हूँ, पहले नाटक वगैरह बहुत सुनते थे, तो पुराने गीत मुझे बहुत पसंद है, पुराने गाने। तो रेडियो तो ऐसा सशक्त माध्यम है इसका, अपना कोई मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है रेडियो का। तो
0: जी बिल्कुल सही कहा राजेंद्र जी। आप साथ ही कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ, को बेसब्री से आपको किसी प्रोग्राम का इंतजार हो, या लाइट चली गई हो, या आपके जो बैटरी है रेडियो की वो ऑफ हो गई हो, या आपका टावर नेटवर्क नहीं मिल रहा हो, कुछ वाक्य आपके जीवन में हुआ कभी?
1: ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा ये सेल के ही रेडियो काम मिले मेरे पास, आपकी 5 रेडियो हैं मेरे पास।
0: जी, बस यही हम सुनना चाहते थे कि आपके पास रेडियो सेट कितने हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो नियमित श्रोता हैं वो जो मतलब कि दिल से रेडियो को चाहते हैं ना, वो घर
1: बिल्कुल
0: के हर एक कोने में एक रेडियो सेट करके रखते हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही आपका थोड़ा सा हमने समय लिया जानने के लिए कि रेडियो और बचपन का जो साथी था आपका, वो अब तक आपके साथ जुड़ा हुआ है, और आप ऐसे ही हमारे रेडियो से जुड़े रहें ये उम्मीद हम करते हैं। और अब बताइए, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: हम दोनों पिक्चर का है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: जी, बिल्कुल, बेहद ही खूबसूरत गीत आपने चुना है राजेंद्र जी, और अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया
1: जी, धन्यवाद।

0: नमस्ते बहन जी।
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: काम खोक रहा हूँ वाली तहसील नोटगढ़ जिला श्री गंगानगर से विनोद बारह से निवेदन कर रहा हूँ।
1: जी विनोद जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत ही बढ़िया बहन जी, प्रोग्राम आपके सुनते हैं बहुत अच्छे लगते हैं।
1: जी शुक्रिया। और अब बताइए, आज आप क्या बात शेयर करना चाहेंगे रेडियो से रिलेटेड? रेडियो और बचपन की यादें, कुछ याद आपको आती हो तो हमसे शेयर कीजिए।
0: बहुत ही अच्छी थीम आपने आज सुनी है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और बचपन में तो वैसे मैं रेडियो सुनता ही आ रहा हूँ, और स्कूल टाइम में भी हम सुनते थे। और मुझे एक जो वाक्य जो टाइम ज्यादा चौथा जो पीरियड मेरे होता था, जो तो सुबह दोपहर की सभा में आपकी जो रेडियो सभा शुरू होती थी दूसरी सभा, उस वक्त मैंने कभी चौथा पीरियड लगाया नहीं स्कूल में, क्योंकि मैं आकाशवाणी बीकानेरी सुनता था। क्योंकि अभी चैनल शुरू होने वाला है, समय 12:30 बजे का है, तो प्रोग्राम सुनने के लिए मतलब कभी मेरे यूं कहता हूँ कि चौथा पीरियड कभी लगाया नहीं।
1: मतलब कि आपने चौथा पीरियड बंक मारा स्कूल में रेडियो के कारण? मतलब इतना क्रेज था आपको रेडियो का कि भाई आप अपनी क्लास मिस करके रेडियो सुनने के लिए जाया करते थे, तो रेडियो आप अपने साथ लेके जाया करते थे या छुपा के रखते थे स्कूल में?
0: नहीं नहीं, छोटा सा रेडियो था बैग में।
1: अच्छा,
0: चले हाँ,
1: तो आप लेके जाते थे, तो आपके टीचर्स आपको कभी डांटते नहीं थे? कभी आप पकड़े नहीं गए?
0: नहीं नहीं, छुट्टी मार देते बाथरूम वगैरह की।
1: अच्छा चलो, बहुत अच्छा वाक्य आपने हमसे शेयर किया।
0: मैं तो ये कहूँगा बहन जी, रेडियो के प्रति हमारी ये दीवानगी है। रेडियो तो हमारा जीवन साथी है,
1: जिससे
0: बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली है। जैसे समय पर पावन, समय के बारे में बताते हैं ये, ज्ञान मंजन के साधन भी बहुत अच्छी तरह से जानकारी हमें रोचक जानकारियां देते हैं।
1: सूचना शिक्षा और मनोरंजन से लबरेज होते हैं हमारे कार्यक्रम, और आपका क्रेज हमें अच्छे से पता चल गया कि भाई आप कितने दीवाने हैं हमारे रेडियो के, और आपकी दीवानगी ऐसी ही हमारे रेडियो के प्रति बनी रहे ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
0: और हर प्रोग्राम मैं बीकानेर के सुनता हूँ, सबसे ज्यादा मैं ग्राम जगत प्रोग्राम जो किसानों के लिए आता है वो सुनता हूँ,
1: वो बहुत लाभकारी होते हैं किसानों के लिए।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैं किसान हूँ और किसानी ही करता हूँ।
1: जी बिल्कुल, हमारा आकाशवाणी जो है वो 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, और
0: बिल्कुल
1: तो हमारे आकाशवाणी से, हमारे रेडियो से आप ऐसे ही जुड़े रहें। और अब बताइए गीत।
0: बिल्कुल गीत बताएंगे बहन जी, आकाशवाणी 90 वर्ष पूरा कर रही है, मैं तो ये कहूँगी दिन रात दोगुनी तरक्की करे और यूं ही हमें हमारा मनोरंजन करती रहे। और धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों का, पूरे आकाशवाणी की जो टीम है सबको धन्यवाद दिल से।
1: जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बताइए गीत।
0: मेरे हम सफर फिल्म का गीत सुना दीजिए, मौसम है बहारों का फूलों का खिलना है।
1: जी बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, और अब आइए सुनते हैं ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।

0: हेलो
1: हरि ओम साहब, नमस्कार
0: जी। हरि ओम, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: हाँ जी
0: जी सुभाष जी, बताइए कैसे हैं आप।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ
0: जी, तो आज आप बताइए कि रेडियो और बचपन, मतलब कि बचपन में रेडियो आपसे जुड़ा रहा है, तो कोई ऐसा वाक्या हमसे साझा कीजिए।
1: ऐसा है, मैं कम से कम 35 रेडियो स्टेशन पर भाग लेता था फरमाइश प्रोग्राम में बचपन से।
0: बचपन से ही?
1: हाँ, जैसे मैं 8वीं क्लास में था तब से, और आपका ये आकाशवाणी बीकानेर संतोष से बराबर सुन रहा हूँ।
0: जी जी जी।
1: और रेडियो सिलोन जो बिना का गीतमाला आती थी बुधवार को रात को 8 से 9, हम सारे श्रोता मिल के सुनते थे। सारा काम छोड़ के पहले वही बुधवार को ही प्रोग्राम सुनते थे, चाहे हम कहीं बाजार में हो, चाहे होटल में हो, चाहे घर हो, चाहे विदेश में हो।
0: अच्छा,
1: पूरे एशिया में सुनते थे अमीर सानी, लेकिन अमीर सानी रहे नहीं आजकल।
0: मतलब कि रेडियो आपके साथ रहता था हमेशा।
1: बिल्कुल, ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, मेरे पास कम से कम 10 रेडियो हैं।
0: तो सुभाष जी, आपने बोला अभी कि हम सब, तो हम सब में आपके दोस्त होते थे या फिर आपके परिवार के सदस्य?
1: हमारे कॉलेज के थे, स्कूल के थे, दोस्त थे।
0: जी जी, मतलब कि आपका फ्रेंड सर्कल पूरा रेडियो से जुड़ा हुआ था।
1: हाँ, हम ये शर्त लगाते थे कि बिना का मैं फर्स्ट गाना कौन सा आएगा,
0: जी जी
1: साथ के अंत में कौन सा आएगा। मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम लोकप्रिय होते थे रेडियो सिलोन में, जो लोग रेडियो लेने जाते पहले पूछते थे कि इसमें सिलोन लगता है या नहीं।
0: तो आप शर्त लगाते थे गाने का।

0: आप अंदाजा लगाते थे, तो क्या वो अंदाजा आपका सही होता था?
1: सही होता था, क्योंकि जब रेगुलर जो होगा ना लिसनर, उसको पता रहता है कि कौन सा गाना फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड आएगा, कौन सा थर्ड आएगा।
0: बिल्कुल, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और नियमित आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, और बचपन से रेडियो आपका संगी साथी रहा है और अभी तक आपका वो साथी
1: अभी भी
0: बना
1: सुन
0: हुआ
1: रहा है।
0: है।
1: गीत सुनने से पहले मैं एक निवेदन करूं कि गर्मी खूब हो रही है, आपको बूंद बूंद पानी बताना चाहिए, एक
0: जी
1: एक
0: जी
1: बूंद, एक एक छोड़ के पानी आ रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को,
0: जी
1: लेकिन पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ, पशु पक्षियों को भी मिलेगा, नहीं वो बेचारे मर रहे हैं बिना पानी
0: वो
1: के।
0: हम पर निर्भर है और हमारी डेली की ड्यूटी होनी चाहिए कि हमारे आसपास के जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, पानी की व्यवस्था है उनकी, वो हम पर्याप्त रूप से करें। बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: हम तो पुराने हैं इसलिए पुरानी फिल्म मिर्जा गालिब का सुना दीजिए, सुरैया और तलत महमूद के बाद।
0: जी, मिर्जा गालिब का आपने गीत पसंद किया है सुभाष जी, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: जी, नमस्कार।
0: जी बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, एमपी से। जी
0: जी बहुत दूर से आपने कॉल किया है मोहम्मद हारून जी, बताइए कैसे हैं
1: काफी,
0: आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं। और आपके मिजाज कैसे हैं?
0: जी हमारे भी मिजाज अच्छे हैं। और बताइए, बचपन से रेडियो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो बचपन और रेडियो की कोई याद हमसे साझा कीजिए।
1: जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है आपकी जानकारी। लेकिन उससे ज्ञान ज्ञान मिलता है उससे, रेडियो से, बचपन से सुन रहे हैं रेडियो से, अच्छी जानकारी मिलती है उससे, समाचार में वगैरह सुनने को मिलता है, हर चीज सुनने को मिलता है।
0: आपके पढ़ाई के दौरान या फिर आपके खेलकूद के दौरान कभी भी रेडियो ने कुछ कुछ रेडियो से कोई ऐसी जानकारी आपको मिली हो जो आपके जीवन में फायदा आपको मिला हो, लाभ उसका मिला हो आपको?
1: बहुत फायदे मिलते हैं रेडियो के सुनने में आपको।

0: पढ़ाई के दौरान में, लिखाई के दौरान में, हर चीज के फायदे मिलते हैं रेडियो के ज्ञान पर। और अपन फोन से बात भी कर, बात आपसे बातचीत हो रही है
1: जी जी बिल्कुल, आपकी और हमारी बातचीत भी रेडियो के माध्यम से हो रही है।
0: तो लाजवाब है। कम से कम बचपन से जुड़े हुए रेडियो से, तो हमारे आकाशवाणी में पूरे पूरे चरणों में फोन लगाते हैं।
1: तो आप हमसे, हमारे कार्यक्रम के जरिए रेडियो से आप जुड़े हुए हैं, तो आप ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे नियमित कार्यक्रम सुने। जी तो आप
0: जी
1: बताइए, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: पापा कहते हैं दुल्हन वाले का गाना सुनवा देना, शादियों का सीजन भी चल रहा है इस वक्त।
1: जी बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया। आइए सुनते हैं ये गीत।
0: जी धन्यवाद आपका।

0: हेलो
1: हाँ जी नमस्ते
0: जी, नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: जी। हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे
0: बहुत
1: हैं
0: दूर से आपने हमें कॉल किया है
1: जी।
0: जी। तो आप हमारे बीकानेर के ढोला मारू चैनल को सुन रहे हैं।
1: हाँ जी
0: तो अब बताइए, रेडियो और बचपन की कोई याद याद हमसे साझा कीजिए।
1: बचपन से हम लगभग 8-9 वर्ष की उम्र से सुन रहे हैं, और पहले रेडियो ट्रांजिस्टर पर सुनते थे, और अब मोबाइल पर आने के बाद से मोबाइल पर ही सुनते हैं।
0: बहुत इजी हो चुका है अब तो सुनना।
1: रेडियो में शुरुआती दिनों में हम अपने यहाँ आकाशवाणी रायपुर में कुछ राय भी लिखते थे, तो वो 2-3 बार तो उनका स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी हुआ है, तो वो अच्छी यादें हैं।
0: तो
1: और
0: आपने
1: इसके
0: रेडियो
1: अलावा
0: स्टेशन
1: हाँ जी हाँ
0: आकाशवाणी
1: जी
0: का रायपुर स्टेशन जो है वो आपने विजिट किया हुआ है?
1: हाँ जी सबसे पहले उसी स्टेशन से जुड़े हैं,
0: जी,
1: और अब
0: तो
1: धीरे धीरे तो अब तो बहुत लगभग 180 स्टेशन से जुड़ चुके हैं
0: तो अब तक जो
1: जी।
0: रेडियो है वो आपका साथी बना हुआ है,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: आप ऐप के माध्यम से आप सभी इंडिया के जितने भी चैनल्स हैं उनका आनंद ले रहे हैं
1: जी
0: जी। तो आप ऐसे ही हमारे नियमित कार्यक्रम सुनते रहें और
1: जी
0: हमारे आकाशवाणी से जुड़े रहें। और बताइए, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म फकीरा से सुनवा देंगे, तोता मैना की कहानी
0: फिल्म फकीरा का गीत आपने पसंद किया है, और अब सुनते
1: जी।
0: हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हाँ मैडम जी नमस्ते।
0: जी, नमस्ते, स्वागत है। आप बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: लक्ष्मी नारायण सोलंकी, गंगा शहर।
0: जी, लक्ष्मी नारायण जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ बस ठीक है, अच्छा
0: जी,
1: है।
0: तो आप बताइए लक्ष्मी नारायण जी, रेडियो और बचपन की कोई याद आपके जहन में हो तो हमसे साझा कीजिए।
1: है जी मैडम, है बिल्कुल, है बिल्कुल। हम लगभग, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत याद है, 7-8 साल के थे जब का बात है कि एक बच्चों का प्रोग्राम आता था, मुकुल प्रोग्राम, वो हमें बहुत अच्छा लगता था। उसके लिए हम संडे को छुट्टी रहती थी ना, जब वो रेडियो के पास ही बैठ जाते थे,
0: तो
1: और
0: आप
1: जब रेडियो होता था वाल वाला रेडियो होता था, वो पास में बैठ जाता था। अब जब एक चीज गुस्सा आता था, लाइट चली जाती थी ना, सब इसके लिए हम क्या है सेल बैटरी लाते थे
0: तो फिर बैटरी वाला
1: उसके
0: रेडियो
1: लिए।
0: आपने रखा अपने पास?
1: हाँ वो रखते थे उसके लिए, मुकुल प्रोग्राम अच्छा लगता था। उसमें वो कविता, हाँ
0: चूंकि
1: कहानियां सुनाई जाती थी, और
0: ज्ञानवर्धक
1: ये
0: कई बातें
1: पहेलियां
0: हैं,
1: पहेलियां चुटकुले
0: तो वो बहुत
1: और
0: आनंद
1: वो
0: का
1: रख।
0: विषय रहता था आपके लिए,
1: हाँ
0: और
1: बहुत
0: बचपन
1: अच्छा,
0: से
1: बहुत
0: आपको
1: अच्छा,
0: इतना
1: स्कूल से ही।
0: क्रेज था कि भाई कार्यक्रम मिस नहीं होना चाहिए, तो आपने बिजली वाला और सेल वाला दोनों तरह के रेडियो आपके घर में मौजूद रहते थे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो घुमाते नहीं देते, और उनको बोलते थे भाई रेड ये सेल का रखो।
0: जी, बहुत
1: फिलिप्स का
0: खूब।
1: रेडियो आता था तब,
0: नहीं, अभी भी आता
1: वही
0: है,
1: है। हाँ
0: और अभी भी हमारे रेडियो जो है वो आप आराम से रेडियो सेट पर भी सुन सकते हैं, और मोबाइल ऐप के थ्रू भी
1: हाँ
0: आप अपना
1: हाँ हाँ हाँ
0: कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से सुन सकते हैं। और
1: हाँ
0: अभी
1: सुन
0: तक
1: सकते
0: आपका
1: हैं,
0: संगी साथी बना हुआ है रेडियो?
1: बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी भी चल रहा है, गाने चल रहे हैं बहुत बहुत। अभी तो क्या है, 1-2 दिन से यही आता है, संगीत बहुत ज्यादा आ रहा है।
0: सही है ना,
1: अभी
0: अच्छा
1: आज
0: है।
1: सुबह सुबह कस्टमर था, मेरी कटिंग की दुकान है, सैलून की, तो उन्होंने ये बोला, आप अभी तक आकाशवाणी सुन रहे हो, ये क्या बात है। अरे भैया ये है कि आकाशवाणी रेडियो तो नहीं है, उसमें FM चैनल आता है, पहले 101.6 विविध भारती में आता था, वो 3 बजे के 3 से 5 तक विविध भारती को देते हैं, बाकी टाइम अपने बिगाने के सुने, आप भी सुनो, FM में, गाड़ियों में, और में, दुकानों में, सब में चलता है।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल, इसीलिए इसका आविष्कार हुआ तो बहुत बढ़िया, 90 साल हो गए।
0: आकाशवाणी जो है वो 90 साल पूरे कर रहा है,
1: बिल्कुल
0: और हमारे जो श्रोता हैं वो नियमित जुड़े रहें, हमारे कार्यक्रम सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रिया ऐसे ही देते रहें, और बस हमें तभी खुशी मिलती है कि जब हमारे श्रोता जो हैं हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट रहते हैं।
1: ठीक है ठीक है। बच्चों का नाम लेना चाहता हूँ,
0: जी, लीजिए आप अपने घर के
1: मेरे
0: सदस्यों
1: मेरे
0: का नाम।
1: मेरी दो हाँ मेरे दो इतने हैं, लड़कियां हैं, 4 उनके लड़के, और कोमल, ममता, भारती, नीतू, हाँ उनके बच्चे हैं, सोनी, दीपक, देवदत्त, और गुंजन, गुंजन और झलक,
0: जी,
1: उनको भी यही कहता हूँ, आप भी बच्चों का अभी भी प्रोग्राम रविवार को आता है वो भी सुनो आप। अलग अलग स्कूल की रिकॉर्डिंग आती है, अलग अलग आज इस स्कूल के आज इस स्कूल के आते हैं ना, तो
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: भी बोलता हूँ आप सुना करो, आपको नॉलेज बढ़ेगा।
0: जी महिलाओं के लिए भी काफी, महिला जगत
1: हाँ
0: कार्यक्रम में काफी ज्ञान हम देते हैं, तो महिलाएं
1: वो आप
0: वर्ग
1: बोल
0: जो
1: दिया
0: आपके
1: आप।
0: घर में है वो भी उस कार्यक्रम को सुन के जानकारियां
1: अरे
0: हासिल करें।
1: मैं

0: तो मेरी मेरी मिसेज का नाम पुष्पा देवी जी है, महिला देखो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, एक से दो तो वो सुनते ही रहते हैं, साथ में मारवाड़ी
1: जी
0: गीत भी आते हैं और जानकारी भी
1: जी
0: आती है देश
1: जी मतलब कि
0: के
1: आपका
0: लिए।
1: पूरा परिवार जो है वो रेडियो
0: हाँ
1: से जुड़ा हुआ है और सब
0: हाँ
1: अपने
0: बिल्कुल
1: अपने पसंद
0: बिल्कुल
1: के अपने अपने कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी
0: बिल्कुल
1: बीकानेर से
0: बिल्कुल
1: जुड़कर। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे नियमित श्रोता बने रहें। और अब बताइए आज अब गीत कौन सा सुनेंगे?
0: ये अमराज फिल्म का है, नीले
1: नीले गगन के तले।
0: तले धरती का प्यार भले।
1: बेहद ही खूबसूरत गीत आपने चुना है और
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: हमारे कंप्यूटर जी ने भी इस गीत को सर्च कर लिया है, तो फिर देर किस बात
0: हाँ
1: की। सुनते हैं ये गीत, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम जी। जी
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: धन्यवाद।
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए।
1: मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल खेलर उदयपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी उदयलाल जी, बताइए कैसे हैं आप।
1: मस्त है, स्वस्थ है, और आपसे बात करके और भी स्वस्थ हो जाएंगे।
0: जी, बिल्कुल, हम यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और
1: जी
0: बताइए कि आज आप हमसे साझा कीजिए रेडियो और बचपन की कोई यादें।
1: जी मैं 1972 से रेडियो से जुड़ा हूँ। जब बीना का गीतमाला आती थी तब से जुड़ा हूँ।
0: जी, तो
1: आज
0: आपकी उम्र
1: तब
0: उस
1: भी
0: समय क्या
1: पचहत्तर
0: रही,
1: साल 55 साल हो गए हैं जुड़े हुए।
0: जब आप रेडियो से जुड़े तो उस समय आपकी उम्र क्या थी।
1: मेरी 20-22 साल की थी।
0: मतलब कि आपने 20-22 साल से रेडियो से आपका जुड़ाव जो है वो शुरू हुआ है।
1: जी मैंने पहला रेडियो 22 साल की उम्र में खरीदा था। मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन उधार पे खरीद लिया। जी
0: और उससे पहले बचपन में कभी आपने रेडियो नहीं सुना।
1: हाँ, हम सुनते थे। पड़ोस में एक हमारे अंकल रहते थे, उनकी शॉप पे बजता था तो हम शॉप के बाहर बैठ कर सुनते थे।
0: मतलब कि बचपन में जो रेडियो वो है, आपने अपने पड़ोस के अंकल थे जो, उनका जो रेडियो जब चलता था तब आप वो रेडियो सुना करते थे, और फिर जब आप 20-22 साल की उम्र में आए तब आपने खुद ने अपने पैसों से अपना जो रेडियो है वो खरीदा, उधार से रेडियो
1: जी
0: खरीदा।
1: जी उस समय
0: उधार।
1: रेडियो पे लाइसेंस बनाना होता था। का लाइसेंस अलग होता था, दुकान का अलग होता था।

0: और बिना लाइसेंस के बजाते थे, इंस्पेक्टर साहब पकड़ लेते थे और जुर्माना वस करते थे। जी
1: जी, मतलब कि ऐसा आपने जो टाइम था रेडियो का वो आपने देखा है।
0: जी
1: जी, बहुत खूब। और अब रेडियो आपके साथ है, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आराम से आप रेडियो ऐप के थ्रू और कैसे भी आप सुन सकते हैं, कहीं भी सुन
0: अब
1: सकते
0: तो
1: हैं।
0: रेडियो ऐप से हम कहीं पर भी कोई भी स्टेशन सुन सकते हैं,
1: पूरे
0: ये
1: इंडिया के।
0: बहुत अच्छी सुविधा हो गई है।
1: जी बिल्कुल। और हमारा आकाशवाणी भी 90 वर्ष पूरा कर रहा है, 8 जून को पूरे 90 वर्ष हो जाएंगे हमारे
0: जी
1: आकाशवाणी को।
0: कोशिश करेंगे अंतिम समय तक हम आकाशवाणी सुनेंगे, क्योंकि रेडियो
1: आप भी जुड़े रहें और
0: के
1: आपके
0: बिना हम नहीं
1: जो,
0: रह सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, आप भी जुड़े और आपके परिवार के सदस्य भी जुड़े रहें और आपके संगी साथी भी इनसे जुड़े रहें कार्यक्रमों के साथ, यही हम कामना करते हैं। और आप बताइए, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: फिल्म आपकी कसम का सुना दीजिए, टाइटल सॉन्ग।
1: की कसम का गीत आपने पसंद किया है, करवटे बदलते रहे।
0: जी
1: जी, तो अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।

0: हेलो।
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: थैंक यू मैडम
0: जी। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राधेश्याम कटारिया, श्री करमपुर, जिला गंगानगर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी राधेश्याम जी, बताइए क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है मैडम।
0: बताइए, आज कोई रेडियो से रिलेटेड आपके बचपन का कोई वाक्या, कोई किस्सा हो तो हमसे साझा कीजिए।
1: मैडम हम जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे, रात को 10 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तो हम रेडियो सुनते ही थे, जिससे हमारी नींद पूरी भी हो जाती थी। इसका मतलब उसके बाद हमारी अच्छी पढ़ाई होती थी और अच्छे ही नंबर आए थे मेरे 10वीं में भी।
0: तो मतलब कि पहले आप रिलैक्स होते थे रेडियो सुन के, और फिर उसके बाद में जो आपको मतलब कि आपका जो एनर्जी थी वो बूस्ट हो जाती थी रेडियो सुन के पढ़ाई के लिए। जी जी जी बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छा करते थे आप। और रेडियो एक ऐसा है यंत्र जो कि हमारी मानसिक

0: जो शक्ति होती है उसको प्रबल करने में अपनी अहम भूमिका अदा करता है।
1: हाँ जी मैडम, मैं तो कम से कम भी 50 वर्ष हो गए मेरे को मैडम रेडियो को, मेरा तो पूरा लगाव है उसके साथ।
0: जी, आपका लगाव बचपन से जुड़ा हुआ है हमारे रेडियो से और वो लगाव अब तक कायम है, और
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: जो
1: मैडम,
0: लगाव है रेडियो के प्रति आपका वो ऐसे ही कायम रहे, यही कामना हम करते हैं। और बताइए
1: हाँ
0: आज
1: जी
0: अब गीत
1: मैडम,
0: कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म है पत्थर के सनम का है, महबूब मेरे महबूब, तू है तो दुनिया कितनी हसी है।
0: फिल्म पत्थर के सनम का गीत आपने पसंद किया है और अब सुनते हैं ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम।

0: श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का फोन कॉल पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर पसंद आया होगा। आज इस कार्यक्रम में हमने हमारे श्रोताओं से साझा की बातें रेडियो और बचपन की। श्रोताओं, यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप अपना फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करवा सकते हैं बुधवार समय दिन में 11 से 12 बजे तक। हमारा फ़ोन नंबर है 01512528041, 01512528042। हमें आपकी फ़ोन कॉल का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम में संयोजन था श्री अमित सिंह का और प्रस्तुति थी श्री रेवंत रामलेखा की। और अब कार्यक्रम हेलो बीकानेर को संपन्न करने की आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा को दें अनुमति। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे

0: ये था फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। सूत्रधार थी श्रीमती कोमल तनीजा। प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेघा की और संयोजन था श्री अमित सिंह का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12 बजने को है। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पोचिशे वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण

0: निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रमों की रूपरेखा।

बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुनेंगे बीकानेर दर्पण। समय रहेगा 8 बजे। वाचक स्वर होगा श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति होगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन होगा श्री अमित सिंह का।

सुगम संगीत आप सुनेंगे शाम को 7:45 पर। ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम 7 बजे ग्रामीण जगत, जिसमें आज भी सुनेंगे फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव ग्वार। इसे प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य।

युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5 बजे 5:05 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा व्यस्त जीवन से निकालें खुद के लिए समय। लघु जानकारी होगी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस विषय पर और महाराणा प्रताप जयंती विषय पर बातचीत होगी। गोपाल कृष्ण गोखले जयंती, नैनो टेक्नोलॉजी, इन विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा फिल्म संगीत भी सुनवाया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भवानी छंगाणी और सुमन बिश्नोई।

संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, टैगोर के साहित्य में नारी पात्रों का चित्रण, समाज सुधार और स्त्री शिक्षा, गोपाल कृष्ण गोखले जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, इन विषयों पर चर्चा होगी। ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मनोज कंवर खंगारोत और रेखा आचार्य।

हम सभी सुनने वालों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे, रात 10 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। संस्कृति भारती कार्यक्रम होगा रात 9:30 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण आप सुनेंगे 8 बजे। गूंजे गांव ग्वाड़ कार्यक्रम आप सुनेंगे ग्रामीण जगत में शाम 7 बजे। ये था कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:10 हुए हैं और अब समय है सुगम संगीत का।

0: इस भक्ति रचना में इस पर था सीमा अनिल सहगल का। लीजिए अब सुनिए रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाज में ये गजल।
1: भरे रहते हैं सारे फूल ही जिसके गरीबा में, वो क्या जाने कि टुकड़े हैं जिगर के मेरे दामा में। हवाए अब्र में क्या मीर हंसता बाग में वो था, गिरी पड़ती है बिजली आज कुछ सहने गुलिस्ता में।

खत उसे बार बार लिखो, इल्तजा तो करो। ये गजल आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में, और लीजिए अब सुनिए पंकज उदास को इस गजल में।

पंकज उदास के गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। 12:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

कॉलेज कैंपस फिल्म से ये गीत लिया था, आवाजें थी उदित नारायण, विनोद राठौड़ और साथियों की। और लीजिए अब सुनिए कुमार सानू के साथ पूर्णिमा को, ये फिल्म है पापा कहते हैं।

कुमार सानू और पूर्णिमा के गाए पापा कहते हैं फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब आप थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री के साथ पांच अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। श्री चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। राजधानी जयपुर में आज लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला हो रही है। इसमें नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम तथा दिव्यांग कानूनों पर मंथन किया जा रहा है। बिड़ला सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने तथा नए कानूनों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े तारागढ़ किले और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार इस किले और क्षेत्र के समग्र विकास तथा संरक्षण की व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज एक और कल दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा जाँच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 14 और 15 मई को चलाया जाएगा। 2 दिन के इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा कानून और आत्मरक्षा के तरीकों के साथ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद मीणा ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं से अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत कालिका टीम और निर्भया स्क्वाड को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अदम्य साहस और वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप को

0: नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का दौर बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट बताया है। वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली और हल्की बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में आज भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम महिला जगत। प्रस्तुत कर रही हैं मनोज कंवर खंगारोत और रेखा आचार्य।

0: स्वागत है सखियों आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में, और स्वीकार करें आपकी इस रेडियो सखी रेखाचार्य
1: और मनोज खंगारोत का प्यार भरा नमस्कार। रेखा, इस कार्यक्रम में देखो ना, हम और हमारी ये जो प्यारी प्यारी सखियां एक दूसरे से कैसे जुड़ते चले गए, और आज ये है कि जितना हम मतलब यूं होते हैं ना कि कितना जल्दी हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, हम हमारी सखियों से मिलेंगे, उतनी ही जो उत्सुक हैं वो हमारी बहनें भी होती होंगी। और हमारी देखो इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा ये कोशिश भी रहती है कि हम अपनी सखियों की हर समस्या का समाधान हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकें।
0: बिल्कुल सही कह रही हो मनोज। और देखो ना मनोज, हमारे जीवन में, या हम कहते हैं कि हमारे जीवन जो है वो हर दिन नई नई चुनौतियां लेकर आता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी परिवार की चिंता, तो कभी बच्चों का फ्यूचर, कभी कुछ भी हम जो सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। तो इस परिवार की चिंता हो, या बच्चों के फ्यूचर की बात हो, या हम स्वास्थ्य की, या हमारे आस पास की जो भी बातें होती है, जो भी विषय होते हैं, उससे जुड़ी बातें लेकर आते हैं हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जब इन जरूरी बातें, जो कि लगती तो छोटी है पर सच्चाई ये है कि इन विषयों के प्रति हमारी जागरूकता और सही जानकारी से ही एक बेहतर परिवार और अच्छे समाज की नींव बनती है।
1: हाँ रेखा, और देखो तभी तो हम हमेशा ऐसे विषय, ऐसी चर्चाएं हमारे कार्यक्रम में लेकर आते हैं जो सीधे हमारे जीवन और घर परिवार से जुड़ी होती है। कभी हम प्रकृति और पर्यावरण की चिंता करते दिखाई पड़ते हैं, तो कभी हम घर परिवार में जो भी शांति है या फिर समझ की जो बातें हैं वो करते हैं। कभी हम महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की चर्चा करते हैं, तो कभी फिर हम स्वास्थ्य का पिटारा खोल के बैठ जाते हैं। कभी हम बदलते मौसम पे चर्चा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा कोई विषय नहीं छूटना चाहिए जो हमारी बहनों के लिए जरूरी है। हम देखो ना, हम उन्हें हमेशा अवगत कराते हैं देश दुनिया में क्या चल रहा है, आज का जो दिन है वो क्या खासियत,
0: सरकार क्या कर रही है, बिल्कुल आसपास क्या हो रहा है।
1: तो देखो बहनों, ऐसी जो कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पे आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। पर रेखा, हमें लगता है कि पहले हमारी बहनों को हम लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।
0: जरूर।

0: आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: राणा जैसा वीर नर धरती पर दुर्लभ होए, मातृभूमि हित जो जिए अमरनाथ जग होए। बहनों, आज हम मना रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती।
3: जी हाँ बहनों, वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि, इन सब के प्रति समर्पण के प्रतीक हमारे महाराणा प्रताप केवल राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के गौरव है। उनका जीवन हमें संघर्ष, आत्मसम्मान और देशभक्ति की प्रेरणा देता है।
2: सखियों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। वे मेवाड़ के ऐसे वीर शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। हल्दीघाटी का युद्ध उनकी वीरता और साहस का अमर बलिदान है। रेखा, जब आज भी हमारे सामने महाराणा प्रताप का जिक्र आता है, हल्दीघाटी युद्ध का जिक्र आता है, या मैं यूं कहूँ सिर्फ मेवाड़ का जिक्र भी आता है ना, तो हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं जब हम उनकी उनकी कहानियाँ सुनते हैं कि क्या वाकई ऐसे वीर भी हुए हैं हमारी धरती से, ऐसे वीर, ऐसे हीरे भी निभजे हैं जिनका सिर्फ उनकी कहानियां सुनने मात्र से मतलब जीवन यूं पूरा जोश से भर जाता है।
3: सही कह रही हो। और सखियो देखो, बहुत कुछ है जो हम महाराणा प्रताप के जीवन से सीख सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: चाहे जैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हमेशा अडिग और निडर रहना हम सबको तो रहना ही चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: महाराणा प्रताप ने जैसे हमने सुनते हैं कि जंगलों में रहकर, पहाड़ों में रहकर भी मातृभूमि की रक्षा की।
2: बिल्कुल,
3: सुनते हैं कि उन्होंने घास मतलब कि रोटी की जगह घास की रोटी खाई।
2: बिल्कुल,
3: उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग किया लेकिन स्वतंत्रता का मार्ग उन्होंने कभी नहीं।
2: बिल्कुल, जैसे बाकी राजाओं ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करी, वैसे अगर ये चाहते तो ये भी कर सकते थे कि मतलब उनका परिवार और वो तो सुख सुविधा का जीवन जी सकते थे ना, पर उन्होंने सुख सुविधाएं नहीं चुनी, उन्होंने अपनी मातृभूमि को चुना, अपने आत्म सम्मान को चुना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो विजय अवश्य मिलती है। आप देखो ना, एक तरफ जब सारा राजस्थान के लगभग बहुत से राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन इन्होंने नहीं की, और इसके लिए उन्होंने लंबा जो कहते हैं ना प्रयास, कठिन जो प्रयास किया, बहुत से संघर्ष इन्होंने करे और अंततः जीत भी उनकी हुई। वो आखिर तक स्वतंत्र राजा रहे, उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आज का जो युवा है ना रेखा, उनको महाराणा प्रताप से साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए देश और समाज के विकास में योगदान देना चाहिए।
3: बिल्कुल मनोज, तभी तो मतलब हमारे जैसे ये महाराणा प्रताप है, इन जैसे जो सपूत पैदा हुए इस भारत की धरती पर, इनकी इतनी शौर्य गाथा है कि इनका हम आज भी देखो अपनी बातों में जिक्र कर रहे हैं, हमारे विचारों में, हमारे जीवन के तौर में कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, तो मतलब कहते हैं ना कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, वैसे ही इतिहास में जन्मे ये हीरे ये भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा सिखाते हैं अगर हमने इनकी सीख को, इनके जीवन को अपने जीवन में उतार लिया, इनके शिक्षाओं को, तो शायद हम कभी नहीं हारेंगे, है कि नहीं?
3: सही कह रही हो।
2: तो चलो, इतने अच्छे संदेश के साथ अब हम बहनों को एक बढ़िया सा गीत भी सुना देते हैं।
3: बिल्कुल।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: रेखा, जब मैं इन उड़ते पक्षियों को देखती हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है कि ये इतनी छोटी सी जान, मतलब प्रकृति का एक अलग ही रूप है। ये जहाँ चाहते हैं वहाँ स्वच्छंद तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, ना किसी से होड़ ना किसी से बैर। आज इस देश में तो कल कुछ, या कह लूँ कुछ समय बाद कहीं और। इनकी ना कोई, ना तो इनकी कोई नागरिकता है, ना इनके लिए कोई सरहदें बनी है।
3: बिल्कुल मनोज, और पता है कि कई प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके मौसम और भोजन की तलाश में एक देश से दूसरे देश को जाते हैं।
2: बिल्कुल,
3: और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में इनकी, कहते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और तब लगता है कि केवल हम इंसान ही समझदार नहीं है, बल्कि प्रकृति के ये छोटे छोटे जीव भी बड़ी समझदारी दिखाते हैं।
2: पर रेखा, आज देखो ना, बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और जो जल स्रोतों के समाप्त होने से इनके अस्तित्व पे खतरा बढ़ गया है। और पता है, इनके संरक्षण की और ध्यान आकर्षित करने के लिए आज के दिन को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
3: बिल्कुल मनोज, जब तालाबों और झीलों के किनारे ये पक्षी जब उड़ते नजर आते हैं ना, तो लगता है मानो प्रकृति ने एक अलग ही मुस्कुराहट का रंग बिखेर दिया।
2: बिल्कुल,
3: ये पक्षी ऊंच नीच का भेद भुलाकर अपनत्व का संदेश देते हैं। तो ऐसे में हमारा भी तो दायित्व बनता ही है कि विदेशों से आने वाले इन मेहमानों का स्वागत हम खुले दिल से करें।
2: बिल्कुल,
3: और इनके संरक्षण के लिए जिम्मेदार हम, मतलब हम सभी को होना ही चाहिए।
2: बिल्कुल, जिम्मेदारी हम सबको उठानी चाहिए। और बात करूं, ये प्रकृति का बहुत अहम हिस्सा है। और रेखा, अगर मैं बात करूं प्रकृति संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, तो देखो महिलाएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रकृति संरक्षण। आप देखो ना, प्रकृति और नारी का तो संबंध सदैव ही बहुत गहरा और आत्मीय रहा है। नारी जीवनदायिनी है, तो प्रकृति भी तो हमें जीवन प्रदान करती है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
3: सही कह रही हो। देखो ना, हमारा जो भारत का चिपको आंदोलन, वो इसी कारण से ही तो जाना जाता है, जहाँ महिलाओं ने प्रकृति की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दी थी।
2: कर दी थी। बिल्कुल, आप अगर बात करूं मैं ग्रामीण परिवेश की, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की, तो देखो ना रेखा, महिलाएं हैं जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, पशु पक्षियों की देखभाल और स्वच्छता बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे घर परिवार को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाती हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति से प्रेम करना सिखा रही
3: हैं। सही कह रही हूं मनोज, और ये छोटी छोटी बातें ही हमें इन पक्षियों के प्रति अपनी जिम्मेवारी का एहसास भी कराती है कि हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तालाबों और जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए और पक्षियों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज से बचना चाहिए। यहाँ तक कि अपने घर के छोटे बच्चे को ये संस्कार देना चाहिए कि पक्षियों को ना तो वे मारे, ना ही उनके घोंसले तोड़े,
2: बिल्कुल उन्हें सताए नहीं,
3: उनके सताए नहीं। और मतलब कि अपने घर की छत पर या आंगन की मुंडेर पर इनके लिए पानी का बर्तन रखे, ताकि
2: ये छोटे छोटे प्रयास हैं रेखा, जो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति संरक्षण से, इन प्रवासी जो पक्षी हैं उन सबके संरक्षण से जोड़ते हैं। इसके लिए हमें कोई बहुत भारी भरकम प्रयास नहीं करने होते, ये छोटे छोटे प्रयास है। जैसे कि आपने कहा कि अभी गर्मी इतनी है, तो इन बेजुबान के लिए हम हमारे घर के बाहर पानी के जो बर्तन है वो रख सकते हैं, इनके लिए दाने की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसे ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाकर हम इनके संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बातें हैं। और रेखा, कहा जाता है कि यदि महिला संकल्प ले ले तो हर घर हरियाली और स्वच्छता का केंद्र बन जाता है। प्रकृति संरक्षण केवल देखो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार ही पेड़ लगाएगी, सरकार ही उनकी देखभाल करेगी। उनके सरकार जो कर रही है उनके साथ साथ यदि हम भी अपने कदम आगे बढ़ाएं, हम भी उनसे हाथ मिलाएं, तो हमारे देश को हरा भरा और लहलाता होने से कोई नहीं रोक पाएगा।
3: और मनोज देखो ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन सुंदर प्रवासी पक्षियों को देखे।

0: इनका आनंद ले तो जरूरी है, इनका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहनों आप भी ये संकल्प लें कि हमें हम जितनी भी हमारी छोटी से छोटी भूमिका भी अगर हम निभा पाते हैं इस प्रकृति संरक्षण में तो जरूर निभाएं। और इस शुभ संकल्प के साथ अब बहनों को एक खूबसूरत सा गीत भी सुना दें।
0: बिल्कुल।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

मनोज, हम अपना इस व्यस्त भरी जिंदगी में इतना उलझ गए हैं कि बस काम काम और काम, और उसके बाद क्या है, मोबाइल या टीवी से चिपके रहना। ये सब तो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन ही गया है। पर अब मैं ये भी मान रही हूँ कि आजकल लोग अपने शरीर के प्रति जागरूक तो होने लगे हैं।

0: मनोज, हम अपना इस व्यस्त भरी जिंदगी में इतना उलझ गए हैं कि बस काम काम और काम, और उसके बाद क्या है, मोबाइल या टीवी से चिपके रहना। ये सब तो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पर अब मैं ये भी मान रही हूँ कि आजकल लोग अपने शरीर के प्रति जागरूक तो होने लगे हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अब योग है या खेलो है, खेल जैसे खेलते हैं तो उनमें लोग मतलब कि अपने इसको जीवन का हिस्सा भी मानने लगे हैं, थोड़ा समय इनको भी देने लगे हैं। और एक बात कहूँ मनोज की, अभी मैं ना रविंद्रनाथ टैगोर जी के साहित्य को पढ़ रही हूँ, उनकी रचनाओं को पढ़ रही हूँ, तो मुझे समझ आया कि तन के साथ साथ मन की शांति भी जरूरी है। और जब हम इन साहित्य को पढ़ते हैं ना, तो मन को एक खुशी अलग ही मिलती है, एक शांति से मिलती है, जो कि हमें मोबाइल या टीवी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात कही रेखा। और देखो, अभी थोड़े दिन पहले हमने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी मनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने साहित्य में समाज, मानवता, प्रकृति, इन सब के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। हमारे राष्ट्रगान को जन जन तक पहुँचाने का काम भी तो इन्होंने ही किया।
0: बिल्कुल।
1: और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी बने। अपने विचारों और लेखन से पूरे विश्व में भारत का इन्होंने नाम रोशन किया।
0: हाँ मनोज, मैं भी उन्हें पहले नोबेल पुरस्कार और जनगण मन के रचयिता के रूप में तो जानती थी।
1: अच्छा।
0: पर मनोज, उनके साहित्य में जब समाज, मानवता के साथ साथ विशेष रूप से मैंने नारी के भावों का जो सुंदर रूप उन्होंने प्रस्तुत किया है वो पढ़ा ना, तो मुझे पता चला कि इन्होंने नारी के जीवन के बारे में अपने साहित्य में पूरा स्थान दिया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने अपने कहानी, उपन्यास, कविता और नाटकों में महिलाओं के जीवन, उनकी भावनाओं, उनके दुख, स्वतंत्रता और संघर्ष को बहुत ही गहराई से लिखा है।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने नारी को केवल घर की सीमाओं तक ही सीमित नहीं दिखाया है, बल्कि उसे संवेदनशील, आत्मसम्मानी और विचारशील महिला के रूप में प्रस्तुत भी किया है।
1: हाँ रेखा, एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में अपने अधिकारों और भावनाओं को समझने वाली नारी का, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का उन्होंने चित्रण अपनी रचनाओं में उकेरा है। उनकी प्रसिद्ध रचना, उनकी जो जितनी भी है मैंने जो पढ़ी है, उनमें जैसे घर बायरे, जिसमें उन्होंने नारी के मन, उसकी स्वतंत्र सोच और समाज की परंपराओं के बीच संघर्ष को दर्शाया। वहीं नष्ट नीड में एक महिला के अकेलेपन और भावनात्मक जीवन को बहुत ही संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया।
0: बिल्कुल मनोज। और टैगोर जी का मानना था कि समाज की उन्नति तभी संभव हो सकती है जब महिलाओं को सम्मान मिले, उन्हें स्वतंत्रता मिले। उन्होंने अपने साहित्य में ये दिखाने का भी प्रयास किया है कि नारी केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली नहीं, बल्कि पूरे समाज की एक महत्वपूर्ण शक्ति है, वो पूरे समाज को साथ लेकर चल सकती है।
1: हाँ रेखा, उनकी रचनाओं में भी महिलाएं देखो शिक्षित, जागरूक और कहते ना आत्मसम्मान से भरपूर दिखाई देती हैं। टैगोर जी के साहित्य का यही संदेश है कि वे महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और स्वतंत्र सोच का अधिकार दिलाना चाहते थे, और उनका मानना था कि ये हर महिला का अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए।
0: तो सखियों, आप भी ऐसे साहित्य से जुड़े और पढ़ें, उनके विचारों से प्रेरणा लें, साथ ही महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और समान अधिकारों को भी बढ़ावा दें। और अभी मनोज, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस सुर में गीत के साथ।
1: बिल्कुल।

0: मनोज, जब भी समाज सुधार और शिक्षा की बात आती है तो हमें उन महान लोगों को तो याद करना ही चाहिए जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम किया।
1: बिल्कुल।
0: और अभी जैसा कि हमने टैगोर जी के साहित्य और उनके भावों के सुंदर चित्रण की चर्चा की है, उसी तरह एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व को हम आज याद करते हैं जिनकी आज जयंती है, और वे है गोपाल कृष्ण गोखले।
1: हाँ रेखा, गोपाल कृष्ण गोखले भारत के महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने हमेशा समाज में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने का काम किया। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को शिक्षा मिले।
0: बिल्कुल।
1: उस समय जब महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तब उन्होंने

0: स्त्री शिक्षा का समर्थन किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया।
1: बिल्कुल। और मनोज उनका कहना था कि समाज में फैली बुराई कुरीतियों के खिलाफ जो मतलब कि आवाज़ वे लोग ही उठा सकते हैं जो पूरी तरीके से जागरूक हो, शिक्षित हो, और इस तरह उन्होंने शिक्षा के महत्व को भी लोगों तक पहुंचाया।
0: सही कह रही हो। और सखियों, आज के समय में भी इनके विचार हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आज सरकार भी देखो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है। समाज में फैली कुरीतियां जैसे कि दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल मजदूरी, वेश्यावृत्ति, इन सबको दूर करने के लिए नए नए कानूनों को बनाया जा रहा है और सख्ती से उनका पालन भी कर रही है।
1: पर मनोज कहते हैं ना कि अगर कोई समाज जागरूक होगा ही नहीं तो उन्हें इन सबका लाभ भी नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: गोपाल कृष्ण गोखले के विचार हमें सेवा, शिक्षा, सद्भाव का संदेश देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सब जागरूक बने, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करें और विशेष रूप से अपनी बेटियों को पढ़ाए, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दे और उनके सपनों को साकार करें।
0: बिल्कुल सही बात है। तो रेखा, इसी संदेश के साथ अब हमें बहनों को एक गीत भी सुनवा देना चाहिए।
1: जरूर।

0: रेखा, हमने इतनी सारी बातें करी है पर जब हमारी बातचीत रसोई को छूकर ना निकले ना तो लगता है कुछ अधूरा अधूरा।
1: सही कह रही हो मनोज की, खाने पीने की हो या कुछ भी ऐसी स्वास्थ्य की या हम बहनों से ये बातें कुछ की नहीं किचन की, तो हमें लगता है अरे कार्यक्रम अब तो अधूरा ही रह गया।
0: बिल्कुल अधूरा ही रह गया। देखो ना अभी जो गर्मी है ना वो अपने चरम पे है। आप देखो मतलब घर से निकलते हैं तो यूं 10 बजे के आसपास ये हालत हो जाती है कि लगता है बस अब तो झुलस ही जाएंगे,
1: झुलस ही जाएंगे,
0: है ना। तो ऐसे में अगर हम कुछ छोटी छोटी चीजों का, कुछ खाने पीने का अगर ध्यान रखें ना रेखा, तो थोड़ा सा हमारा जो शरीर है वो मतलब ठंडक हमारे शरीर को मिलेगी, और जो पानी की कमी है ना वो भी हमारे शरीर में नहीं होगी। और अगर इसी कड़ी में, रेसिपी में अगर मैं बात करूँ ना, तो बाजरे की जो राबड़ी है ना वो एक बहुत अच्छा विकल्प है। मतलब इतना अगर रात को जैसे हम बाजरे की राबड़ी बना के रखते हैं और सुबह उसे ठंडी राबड़ी को अगर हम छाछ दही में मिला के खा के निकल लें ना, घर से बाहर निकल रहे हैं,
1: तो रेखा में आपको पौष्टिकता
0: तो है ही, पूरा मतलब पेट भी भरा भरा रहेगा, और साथ ही जो प्यास लगना कह दो या जो
1: पेट की ठंडक होती है मिल जाती है,
0: ये सब बहुत राहत हमें बहुत पहुंचाती है।
1: सही कह रही हूँ मनोज। देखो इसके लिए कोई तामझाम की तो जरूरत
0: भी नहीं है।
1: अब जैसे कि मेरी सासू माँ है, वो अक्सर गर्मियों के मौसम में इनकी ये समस्या रहती है कि पेट में भी जलन रहती है, त्वचा पे भी चकते से हो जाते हैं, तो वो अक्सर क्या करते हैं रात को बाजरे के आटे को एक गिलास छाछ में डालकर घोलकर और धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट पका लेती है, फिर उसे मिट्टी के बर्तन छोटे से घड़े में रखकर और रख देती है। सुबह वो बाजरे की राब भी ठंडी ठंडी सौंधी सौंधी खुशबू के साथ, और जब हम इसका स्वाद लेते हैं तो हो इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि मतलब पेट की ठंडक के साथ साथ ये जीभ को भी स्वाद देती है और मन को भी देती है।
0: और पता है रेखा जी, हमारे यहाँ पे ना, मैं मतलब मेरे पीहर की बात करूँ तो हमारे वहाँ पे ये जो बाजरे की जो राबड़ी है, जैसे आपने बताया कि इसमें आटा यूज़ करते हैं, बट मेरे पीहर में क्या करते हैं कि जो बाजरे के दाने होते हैं, बाजरा होता है, उसको भिगो के रखते हैं पहले थोड़ी देर, और फिर उसे जो ओखली जो होती है उसमें बढ़िया कूट के उसको और छाछ में मिला के और धीमी आँच पे जैसे चूल्हे पे उसको चढ़ाया और धीमी धीमी आँच पे उसको गाढ़ा होने तक बढ़िया पकाते हैं। रात को उसे गरम गरम खाया जाए और सुबह जब वो ठंडी हो जाती है तो उसको दही के साथ, छाछ के साथ मिला के, और अगर उसमें एक प्याज काट के डाल लिया जाए तो उसके स्वाद के तो कहने ही क्या है।
1: पानी आ गया, ये तो रेसिपी आज मैं जरूर ट्राई करूंगी।
0: बिल्कुल ट्राई करना, इतना अच्छा तुम्हें लगेगा।
1: सही कह रही हो मनोज। अब देखो ना मनोज, अब तो हमारे इस स्टूडियो की जो घड़ी है ना वो टिक टिक करके इशारा कर रही है।
0: इशारा तो कर रही है, पर बहनों मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो राबड़ी की जो रेसिपी मैंने आपको बताई है, ये रेखा जी तो बनाएंगी, आप भी इसे जरूर बनाना, तभी हमारा हमारे कार्यक्रम में इस रेसिपी को लेने का जो उद्देश्य है ना वो पूरा हो जाएगा
1: और आपको गर्मी से राहत भी मिल जाएगी।
0: अब वही चीज है रेखा, सही कह रही है कि जो स्टूडियो की घड़ी है ना वो हमें अब कोई दूसरी रेसिपी बताने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे रही है। तो बहनों अभी के लिए अपनी सखी मनोज खंगारोत
1: और मैं रेखा चार्य
0: को देओ इजाजत। नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम में महिला जगत, प्रस्तुत कर रही थी मनोज कंवर खंगारोत और रेखा आचार्य। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। 2 बजने को है। अब आप थोड़ी देर में मिड डे न्यूज और उसके बाद दोपहर समाचार सुनेंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज़।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।

0: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की

0: 73वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 125,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 2:30 में हैं अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आशा भोसले और साथियों को आपने सुना हुजूर वाला का ये गीत, ये फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है एक बार मुस्कुरा दो, आवाज मोहम्मद रफी की।

जसविंदर नरूला और उदित नारायण को आप सुन रहे थे आ अब लौट चलें फिल्म में। लीजिए अब सुनिए अनजाने फिल्म का गीत, स्वर है सुरेश वाडकर और पूर्णिमा के।

सुरेश वाडकर और साधना सरगम को आप सुन रहे थे अनजाने फिल्म में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दीप के गए दशहरा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। दिन के 3 बजे हमारी आज की ये पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारे प्रसारण जारी रहेंगे।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5 बजने वाले हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति

0: सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर संध्या के 5:05 होते हैं। राजस्थान के गर्व बीकानेर की मिट्टी और पूरे देश के युवा श्रोताओं के साथ युवा आवाज का नया सुर आकाशवाणी बीकानेर पर खास आपके लिए युवा दिलों की धड़कन, युवा सोच की उड़ान, युवाणी प्रोग्राम आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं। आपकी खुली बहस, सच्ची बातें, नई सोच और आपकी अपनी आवाज। तो लीजिए वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए और कान लगाइए, तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आपके होस्ट भवानी छंगाणी और सुमन विश्नोई के साथ युववाणी कार्यक्रम।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी युवा साथी सुमन बिश्नोई।
1: और मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त भवानी। उम्मीद करती हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है।
0: दोस्तों, आजकल की जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि हर कोई बस भागता ही जा रहा है। सुबह से लेकर रात तक बस काम, जिम्मेदारियां, मोबाइल नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, सब कुछ इतना ज्यादा हो गया है कि इंसान खुद के लिए समय निकालना ही भूल गया है।
1: बिल्कुल सही कहा सुमन तुमने। आज का हमारा विषय भी कुछ इसी पर है, व्यस्त जीवन शैली में खुद के लिए समय निकालना। यानी इतनी बिजी लाइफस्टाइल के बीच में हम अपने लिए कुछ पल कैसे निकाल सकते हैं और खुद को खुशी कैसे दे सकते हैं।
0: क्योंकि अगर इंसान खुद के लिए समय नहीं निकाल

0: लेगा तो धीरे धीरे वह अंदर से थकने लगता है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है हमें, लेकिन अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, डिप्रेशन, ये सब बढ़ने लगता है।
1: सही कहा। आज हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है दोस्तों। करियर, पैसा, ये सब में हम सब की एक दौड़ लगी हुई है, लेकिन इस दौड़ में सबसे पीछे छूट जाता है खुद का साथ।
0: कई लोग तो इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि आखिरी बार उन्होंने खुद के साथ शांति से बैठकर एक कप चाय कब पी थी,
1: या बिना किसी टेंशन के खुलकर कब हंसे थे।
0: दोस्तों, जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं, जिंदगी का मतलब है जीना, मुस्कुराना, अपने लोगों के साथ समय बिताना और सबसे जरूरी खुद को समझना, खुद की प्रायोरिटीज को रखना।
1: बिल्कुल सुमन, आजकल एक और चीज का बहुत मतलब एक और चीज है वो बहुत कॉमन हो गई है, वो है लोग फिजिकली तो सबके साथ मौजूद रहते हैं लेकिन मेंटली ही कहीं और ही रहते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। हम अक्सर देखते हैं कि हम फैमिली के साथ बैठे हैं, कोई मोबाइल लेके बैठा है, कोई अपना काम कर रहा है, ऑफिस की मेल चेक कर रहा है, पर पास बैठे इंसान से बात नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पे अननेसेसरी उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, पर पास में बैठे इंसान से बात नहीं करते।
1: और इसी वजह से इंसान धीरे धीरे खुद से ही डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। दोस्तों, जब आपको कोई बोले ना कि तुम अपने सेल्फ केयर किया करो, तो उनको बोलिए कि हाँ मैं जरूर करूंगा। क्योंकि दोस्तों, सेल्फ केयर करना कोई सेल्फिश होना नहीं है, यह अपनी जरूरतों को, अपनी हैबिट को पहचानने की एक चीज है।
0: हाँ, क्योंकि अगर आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे, खुद को खुश नहीं रहेंगे, तो दूसरों को भी खुशी नहीं दे पाएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में आराम करेंगे। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती दोस्तों।
1: और बाद में जब शरीर थक जाता है ना, तो मन परेशान हो जाता है, तब समझ आता है कि खुद को समय देना कितना जरूरी था।
0: तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम हमारे बिजी शेड्यूल में खुद के लिए कितना समय निकाल सकते हैं।
1: तो उसके लिए सबसे पहला तरीका बहुत आसान है। दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालिए। बस 15 से 20 मिनट ही बहुत है।
0: सिर्फ 20 मिनट?
1: जी हाँ, उन 20 मिनटों में आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। किताब पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप डांस भी कर सकते हैं।
0: सही कहा तुमने। कई बार लोग सोचते हैं कि इतना छोटा समय क्या ही फर्क पड़ जाएगा इससे, लेकिन सोचिए, यही छोटे छोटे पल आपको मानसिक शांति के पास लेके जाएगा। आपको शांति मिलेगी जब आप अपनी खुशी का काम करेंगे।
1: बिल्कुल। और तुम्हें पता है सुमन, सबसे दूसरा जो पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो सबसे वैलिड पॉइंट है, नो कहना सीखो।
0: सही कहा तुमने।
1: क्योंकि कई बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं हम। हर काम के लिए हाँ बोलते बोलते खुद के लिए ही समय नहीं बचता।
0: सही कहा तुमने। कभी कभी अपने मन की सुनना भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल। अगर आप थके हुए हैं, परेशान हैं, तो थोड़ा आराम करना कोई गलत बात तो नहीं है।
0: दोस्तों, आजकल मेंटल हेल्थ पर काफी बातें होने लगी है, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे सीरियस नहीं लेते हैं।
1: बिल्कुल। जबकि लगातार काम करना, स्ट्रेस लेना और खुद को इग्नोर करना सीधे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है।
0: कई लोग देर रात तक काम करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते और फिर कहते हैं समय ही नहीं मिलता।
1: लेकिन सच तो ये है कि समय निकालना पड़ता है। जैसे हम मीटिंग्स के लिए निकालते हैं, वैसे ही खुद के लिए थोड़ा सा टाइम फिक्स करना चाहिए दोस्तों।
0: अच्छा आइडिया तुम्हारा, जैसे कि मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम निकालना, फैमिली के साथ बैठ के बातें करना, और इसके साथ दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी, नो मोबाइल आवर, यानी दिन में कम से कम एक घंटा ऐसा होना चाहिए जब हमारे पास हमारा फोन हो ही ना।
1: बिल्कुल। क्योंकि लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग भी थक जाता है और नींद पर भी बुरा असर पड़ता है।
0: सही कहा तुमने। और इससे इंसान की जो खुद की हॉबीज है उससे हम जुड़ नहीं पाते,
1: जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, ये चीजें तो हम छोड़ ही देते हैं। और अदर एक्टिविटीज जैसे हम कर सकते हैं जिसमें हमें शौक है, वो चीज हमें ज्यादा अपनानी चाहिए।
0: लेकिन इसके लिए अक्सर हम देखते हैं हमारे जो बड़े हैं घर में, वो बोलते हैं अब हमारी उम्र नहीं है ये सब करने की।
1: अरे नहीं, खुशी की कोई उम्र नहीं होती सुमन। अगर आपको कुछ पसंद है तो उसके लिए समय जरूर निकाले दोस्तों।
0: क्योंकि जिंदगी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए नहीं होती, जीवन का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, एक और सबसे जरूरी बात, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी में।
1: बिल्कुल। क्योंकि असली खुशी जो होती है वो रिश्तों में ही होती है।
0: आजकल हम देखते हैं लोग

0: अपने फॉलोअर्स ऑनलाइन लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन घर वालों से बात करना वो तो बिल्कुल ही कम कर दिया है।
1: कई बार एक छोटी सी बातचीत भी दोस्तों मन को जो अगर अब भारीनेस फील हो रहा है तो उसको हल्का कर देती है।
0: सही कहा तुमने, कभी माता पिता के साथ बैठिए, बच्चों के साथ खेलिए, दोस्तों से मिलिए, ये छोटे छोटे पल जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और सबसे खास बात है कि खुद से प्यार करना सीखिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अक्सर हम दूसरों की कमियां देखते हैं, जो दूसरे हमें कमियां बताते हैं हम उसको भी देखते हैं, पर हम जो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको तो भूल ही जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको माफ करना भी जरूरी है।
1: और दोस्तों आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि लाइफ में परफेक्ट कोई नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ गलती होती ही है, इसलिए जिंदगी का नाम ही सीखना है।
0: कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने सपनों को ही भूल जाते हैं। बचपन में जो चीजें हमें खुशी देते थी, बड़े होकर वही हमसे पीछे छूट गई है। लेकिन दोस्तों इसके लिए अभी भी देर नहीं है। अगर हम सोचे तो अपने अंदर से उस खुश इंसान को फिर से जगाइए, सुबह की ताजी हवा को महसूस कीजिए, बारिश में भीगिए, अपनी पसंद के गाने सुनिए और अकेले थोड़ी देर टहलिए जो आपको शांति दे। गाने सुनने से दोस्तों सबका दिमाग है वो एकदम फ्रेश हो जाता है, ऐसा लगता है नया नया फील हो रहा है। और इसी के साथ मैं भी सुनाती हूँ आपको एक प्यारा सा गीत जो आपके मन को खिलखिला देगा।

0: दोस्तों अब वक्त है आपके अपने पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का और हम पूछेंगे आपसे दो सवाल।
1: तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, महाराष्ट्र के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा नगर ठोस अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस प्लांट स्थित है?
0: और दोस्तों आपके लिए हमारा दूसरा प्रश्न है, नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल और कार्निवल 2025 कहां आयोजित हुआ था?
1: तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप प्रोग्राम के एंड में तब तक रखिए, तब तक हम आपसे दोस्तों
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
6: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
5: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
6: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
5: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
6: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
5: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
6: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
5: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
6: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद खास दिन की, जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे।
0: परिंदे कभी अपने कल के लिए घोंसलों में कैद नहीं होते, वो हर सुबह नई उड़ान पर विश्वास करते हैं। दोस्तों हर साल दुनिया भर में लाखों पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, कोई बर्फीले इलाकों से गर्म प्रदेशों की ओर आता है तो कोई भोजन और सुरक्षित वातावरण की तलाश में नए देशों का रुख करता है।
1: बिल्कुल सुमन, इन पक्षियों की यह यात्रा किसी एडवेंचर से कम नहीं है। छोटी सी चिड़िया भी समुद्र पहाड़ और रेगिस्तान पार कर लेती है, यह प्रकृति का अद्भुत मिरेकल है ना?
0: लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये पक्षी रास्ता कैसे पहचानते होंगे?
1: मेरे हिसाब से वैज्ञानिक जो होते हैं इन्होंने ये पता लगाया सुमन कि पक्षी जो होते हैं वो सूरज तारों और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपनी दिशा तय करते हैं। कुछ पक्षियों की मेमोरी इतनी तेज होती है कि वे हर साल उसी जगह लौट आते हैं।
0: अरे वाह, सचमुच कुदरत का कमाल है। दोस्तों प्रवासी पक्षी केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि एनवायरमेंट को भी बैलेंस रखने में मदद करते हैं।
1: जी हाँ, ये बीज फैलाने, कीड़ों को नियंत्रित करने और इकोसिस्टम को हेल्दी रखने में

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: दोस्तों, लेकिन दुख की बात यह है कि आज इन पक्षियों के सामने कई खतरे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, जंगलों की कटाई और वेटलैंड्स का खत्म होना।
0: सही कहा, कई पक्षी अपने सुरक्षित ठिकाने खो रहे हैं। तेज रोशनी, प्लास्टिक वेस्ट और ऊंची बिल्डिंग्स भी इनके लिए खतरा बनती जा रही है।
1: और दोस्तों, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है ताकि हम प्रकृति और पक्षियों की रक्षा कर सकें।
0: दोस्तों, हम छोटे छोटे कदम उठाकर भी इन पक्षियों की मदद कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम पेड़ लगा सकते हैं, पानी के लिए छोटे छोटे बर्तन रख सकते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और पक्षियों को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी से बचना।
1: और दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी, बच्चों को पक्षियों और प्रकृति के प्रति जागरूक करना, क्योंकि यही वह आगे आने वाली पीढ़ी है जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्टर बनेगी।
0: बिल्कुल। तो दोस्त, क्योंकि सुरक्षित पक्षी मतलब सुरक्षित पर्यावरण और सुरक्षित पर्यावरण मतलब बेहतर भविष्य।
1: जब सुबह पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है तो मन खुद ब खुद खुश हो जाता है। सोचिए, अगर ये पक्षी ना रहे तो हमारी धरती कितनी सुनी लगेगी।
0: इसीलिए दोस्तों, हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। कैसे? जैसे अभी हमने आपको बता ही दिया था, पेड़ लगाकर, अपने छतों पर बर्तन रख सकते हैं, इन सभी चीज़ से। क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि सुरक्षित पक्षी मतलब सुरक्षित पर्यावरण और सुरक्षित पर्यावरण मतलब बेहतर भविष्य।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: Cena.
1: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: महसूस कीजिए रेडियो
1: रेडियो
0: रेडियो
1: रेडियो,
0: क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: वीरों की धरती ने जिसको अपना लाल कहा, इतिहास ने उसको अमर मिसाल कहा। जिसने स्वाभिमान हेतु सब कुछ वार दिया, भारत ने उसको महाराणा प्रताप कहा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे वीर योद्धा की गाथा जिनका नाम सुनते ही शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव हृदय से उमड़ पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, आज का हमारा विषय ही कुछ ऐसा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज का हमारा विषय है महाराणा प्रताप जयंती। एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय भक्ति की एक मिसाल है।
0: बिल्कुल सुमन, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। और दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में बस यही कहना चाहूंगी कि मिट्टी की खुशबू में जिसका अभिमान बसता था, मेवाड़ की शान में जिसका सम्मान बसता था, झुकना जिसे मंजूर कभी था ही नहीं, राणा के सीने में पूरा हिंदुस्तान बसता था।
1: वाह, सही कहा तुमने। दोस्तों, जब जब वीरता की मिसाल दी जाएगी, महाराणा प्रताप का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
0: सही कहा। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे दोस्तों, वे स्वतंत्रता, स्वाभिमानी और संघर्ष के प्रतीक थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता थे महाराणा उदय सिंह और माता थी जयवंताबाई।
1: दोस्तों, बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी और स्वाभिमानी थे। उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति की शिक्षा दी गई थी। जब राजस्थान के कई राजाओं ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तब महाराणा प्रताप ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वे कभी भी मेवाड़ की स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे।
0: बिल्कुल, उनका मानना था कि राजपूत का सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। और दोस्तों, अगर महाराणा प्रताप की बात हो और हल्दी घाटी का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। दोस्तों, 18 जून 1576 वो दिन जब हल्दी घाटी की धरती वीरता के रक्तिम रंग में रंग गई थी।
1: उस युद्ध ने भले ही महाराणा प्रताप की सेना की संख्या कम थी, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन हौसले आसमान से भी ऊंचे थे। इस युद्ध में उनके साथ उनके प्रिय घोड़ा चेतक भी था, जिसने अपने स्वामी के लिए अद्भुत वीरता दिखाई। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह प्रताप का एक साथी, एक मित्र था।
0: बिल्कुल दोस्तों, चेतक के लिए तो बस यही कहना चाहूंगी कि जिसने अपने प्राण गवाकर स्वामी धर्म निभाया, इतिहास ने उस चेतक को अमर योद्धा बताया। दोस्तों, महाराणा प्रताप हमें बताते हैं कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी चाहिए। हमें, आज के युवाओं को, हम सबको महाराणा प्रताप जी से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए।
1: महाराणा प्रताप जयंती केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उनके आदर्शों को याद करने और जीवन में उतारने का एक अवसर है हमारे लिए।
0: आइए हम सभी उनके साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति से प्रेरणा लें।

0: पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी वीरता, स्वाभिमान और अदम्य साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप जी की। उनकी शौर्य गाथा हमें यह सिखाती है कि राष्ट्र के सम्मान के लिए संघर्ष करना कितना आवश्यक है।
1: और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने तलवार नहीं बल्कि अपने विचारों, ज्ञान और नीतियों से राष्ट्रीय सेवा की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, और आज है उनकी जयंती। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को विचारों की शक्ति दी और देश को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया।
0: बिल्कुल, वो कहता है ना कि कलम की धार से जिसने इतिहास नया लिखा, सत्य और नीति का जिसने हर पाठ लिखा, देश सेवा जिसका जीवन, जनहित जिसकी शान, गोखले जैसे महापुरुषों से बढ़ता भारत महान।
1: दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जिनका जन्म 9 मई 1966 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। वे साधारण परिवार से थे लेकिन असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया।
0: उन्होंने कम उम्र में ही अंग्रेजी और भारतीय राजनीति पर गहरी पकड़ ली। गोखले जी का मानना था कि शिक्षा जो है वही समाज को बदलने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए और बाद में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े। यहीं से उनके जीवन ने राष्ट्र सेवा में दिशा पकड़ी।
1: गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे उदारवादी विचारों के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि संवाद, तर्क और संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, 1905 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्या आप जानती हैं सुमन कि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे?
1: बिल्कुल, गोखले जी महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति की गहराइयां समझाया करते थे। गोखले जी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक समानता और गरीबों के उत्थान में प्रबल समर्थन दिया।
0: बिल्कुल सही, 1905 में उन्होंने सर्विट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था कि युवाओं को तैयार करना जो निस्वार्थ भाव से देश की जो है वो सेवा करे। आज भी यह संस्था उनके आदर्शों की मिसाल है। गोखले जी कहते थे कि देश का उत्थान शिक्षा, अनुशासन और सेवा से ही संभव है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, उनका जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि विवेकपूर्ण विचार से भी होता है।

0: बिल्कुल, आज के युवाओं को गोखले जी से हर चीज वो सीखनी चाहिए, जैसे ज्ञान और चरित्र दोनों ही जीवन में बहुत आवश्यक हैं। अगर युवा शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार बने तो देश निश्चित ही प्रगति पर हो रहेगा।
1: दोस्तों, इसी के साथ सुनाते हैं हम आपको एक प्यारा सा गीत।

0: आज हम बात करेंगे सुमन एक ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी की जिसने साइंस की दुनिया में नई क्रांति ला दी है। मैं बात कर रही हूँ नैनो टेक्नोलॉजी की।
1: दोस्तों, नैनो शब्द सुनने में छोटा लगता है और वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। नैनो का अर्थ है मीटर, मीटर का भी अरबवा हिस्सा, यानी इतना सूक्ष्म कि हम उसे हमारी सामान्य आंखों से तो देख ही नहीं सकते।
0: बिल्कुल, नैनो टेक्नोलॉजी ने साइंटिस्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्तर पर काम करते हैं। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि छोटे आकार में पदार्थों के गुण बदल जाते हैं और वे ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं।
1: आज नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कई अलग अलग फील्ड्स में हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिकल की, तो वहाँ पे भी इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत सारे चेंजेस ला पा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी, नैनो पार्टिकल्स की मदद से हम इसमें जो बीमारियाँ है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ ले रहे हैं। और सबसे इसमें एक चीज़ और है कि हम इससे इफ़ेक्टिव और इससे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। हम जहाँ बीमारी है उसका ट्रीटमेंट नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू उधर ही कर पा रहे हैं।
0: इतना ही नहीं सुमन, तुम्हें पता है नैनो सेंसर्स के जरिए कई डिजीज़ का पता लगाया जा सकता है, जैसे स्टेज में लगाया जाता है, यानी भविष्य में इलाज और भी आसान हो सकता है।
1: और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा योगदान है। आज हम देख रहे हैं स्मार्टफोन,

0: लैपटॉप्स और स्मार्ट गैजेट्स छोटे और फास्ट होते जा रहे हैं।
1: और इसका कारण है नैनो चिप्स। ये छोटे आकार में ज्यादा स्पीड लेते हैं और स्टोरेज कैपेसिटी भी देते हैं।
0: और दोस्तों, इसी के साथ हम लेके आए हैं आपके लिए रोजगार सूचना।
1: बिल्कुल दोस्तों, के रोजगार सूचना में अगर हम बात करें पदों की संख्या की, तो वो है 9 रोजगार सूचना दोस्तों, वो है उसकी उसका जो पद है वो
0: 9195 पदों पर भर्ती निकाली है दोस्तों। और आप यही सोच रहे होंगे कि हम भर्ती के पद तो बता रहे हैं पर नाम नहीं बता रहे, तो दोस्तों नाम है कांस्टेबल भर्ती। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल भर्ती पर 9195 पदों पर भर्ती निकाली है और इसका ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल से ही शुरू हो चुका था और इसकी आवेदन अंतिम तिथि होगी 19 मई 2026। और जो भी इसमें इच्छुक विद्यार्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसकी शैक्षिक योग्यता है 10वीं पास और आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष से 23 वर्ष तक। आवेदन करने के लिए आप CRPF की वेबसाइट पर जाएं और इसकी वेबसाइट है rect.crpf.gov.in पर। दोस्तों, हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में पूछे थे आपसे 2 प्रश्न और अब वक्त है उनके सही जवाब जानने का।
1: हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा नगर ठोस अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस प्लांट स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है नागपुर।
0: और दूसरा प्रश्न था, नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल और कार्निवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? और इसका सही आंसर है मणिपुर, इम्फाल।
1: बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आज जो हमारा जो कार्यक्रम था वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था, क्योंकि हमने महाराणा प्रताप जी के बारे में बात की, गोखले जी के बारे में बात की। तो इसी के साथ मैं भवानी
0: और मैं सुमन आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार,
1: नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के कार्यक्रमों में आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। सांध्य किरणों की पहली दस्तक के साथ मरुधरा की सांस्कृतिक धरा से हम आपका स्वागत करते हैं। आज की इस सुहानी सांध्यकालीन सभा में आप सभी का आत्मीय अभिनंदन है। साहित्य, संगीत और सूचनाओं के संगम में आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं कार्यक्रम विवरण के तहत। यह है ज्ञान और मनोरंजन की एक विशेष श्रृंखला। आज 6:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से होंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर समाचारों के तुरंत बाद मधुर सुरों से सजा फिल्म संगीत आप सुनेंगे। 6:30 बजे अब रुख करेंगे जयपुर केंद्र की ओर, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर होता है हमारा दैनिक विशेष स्तंभ जिले की चिट्ठी। 6:45 पर मरुधरा की अपनी भाषा में प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में। 7:00 बजे हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम गीत गुंजे गांव गुआड़। फरमाइशी पत्रों और ईमेल पर आधारित लोक गीतों के इस खंड में आपके साथ होंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य। 7:45 पर दिन भर की थकान मिटाने के लिए रसमय सुगम संगीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। 8:00 बजे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक हलचलों का साहित्यिक लेखा जोखा आप सुनेंगे कार्यक्रम बीकानेर दर्पण में। आज इस में सुनेंगे आप 143वीं कड़ी। इसकी प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की होगी और इसमें वाचक स्वर होगा श्री महेश उपाध्याय का और संयोजन अमित सिंह का। 8:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे और 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा। 9:15 पर आप सुनेंगे मधुर सुरों से सजी फिल्म संगीत की महफिल। 9:30 पर दिल्ली से रिले होगा संस्कृति भारती। 10:00 बजे शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों के लिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। श्रोताओं, 11:00 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार के पश्चात आज की सभा का समापन होगा। आशा है सुरों और

उपचुनाव का यह सफर आपकी शाम को और अधिक यादगार बना देगा। तब तक शब्दों की मर्यादा और सुरों के माधुर्य के साथ हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। आशा है आज का यह प्रसारण आपकी स्मृतियों में एक अमिट छाप छोड़ेगा। तो सुनते रहिए आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल R.N. रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव M.A. बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार

0: आने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आप सुन रहे हैं शीर्षक संगीत। आज का शीर्षक बड़ा कहता जाना पहचाना सा लगता है, देश और उसकी मिट्टी। महाराणा प्रताप की जयंती और उसके अलावा गोपाल कृष्ण की गोखले जी की जयंती। अगर मैं कहूं कि दो महान वीरों की जयंती की बात अगर हम करें तो आज इनके लिए जो सर्वोपरि चीज़ है वो है देश और उसकी मिट्टी। इसकी मिट्टी के लिए मरने तक के लिए, लड़ने मरने तक के लिए तैयार है। वीरता की परचम अगर लहराना चाहते हैं तो ऐसे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के उन महान योद्धाओं की जिनकी वीरता आज भी पूरी दुनिया गाती है। महाराणा प्रताप को आप कैसे याद नहीं कर सकते यदि किसी भी वीर के बारे में बातचीत हो रही हो तो। महाराणा प्रताप को याद करते ही मन में एक आग सी सुलग उठती है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे ये महान राजपूत कभी मुगलों के सामने झुके ही नहीं। अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह की अधीनता स्वीकार करने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया था। और 1572 में जब उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली तब से लेकर अंतिम सांस तक उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। सबसे यादगार तो है वो हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 का। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद भी उन्होंने मुगल सेना से खूब संघर्ष किया और इस युद्ध में उनका वफादार घोड़ा चेतक, अब चेतक नाम कैसे बोलते, इस युद्ध की विशेषता देखिए श्रोताओं, यहां पर छोटी से छोटी चीज का भी महत्व जो है देश के लिए वफादारी के रूप में लिया जाता है। चेतक कितनी जगह पर वफादारी का संकेत माना जाता है, वो चेतक भी अमर हो गया। चेतक ने मुगल हाथी पर चढ़कर उस महावत पर हमला किया था। भवानी जी ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हल्दीघाटी के बाद भी महाराणा प्रताप ने 12 साल तक जंगलों और पहाड़ों में रहकर मुगलों से अपनी लड़ाई जारी रखी, कभी समझौता नहीं किया। सच में उनकी सादगी और स्वाभिमान बड़ा अद्भुत था। वे कभी राजसी ठाट बाट में दिखाने लायक दिखाते नहीं थे, साधारण जीवन जीते थे, लेकिन सिद्धांतों पर कभी समझौता नहीं किया। उनके सिद्धांत आसमान के परम सीमा तक को भी छूते थे। आज के समय में भी उनका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वाधीनता से बढ़कर कोई धन नहीं, कोई सुख नहीं। 19 जनवरी 1997 को

में वे घोड़े से गिरकर घायल हुए और उसी में उनका देहांत भी हो गया, लेकिन आज भी उनकी याद राजस्थान की मिट्टी में बसी हुई है। इसीलिए आज देश और मिट्टी की बात करते हुए शुरुआत उन्हीं से, उन्हीं की चर्चा से आपके साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम में की।

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे देश की मिट्टी की और इस देशभक्ति के जज्बे की। हम बात कर रहे हैं ऐसे महान देशभक्तों की जिनके दिल में भारत माता के लिए एक अलग सी आग थी, जुनून थी अपने देश के लिए मर मिटने की। उनकी हर सांस देश के लिए आज़ादी और गौरव के लिए हर धड़कन धड़कती थी। तो आइए बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, सच्चे अर्थों में एक जुनूनी देश प्रेमी। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गोखले जी ने जन्म पाया और 18 साल की उम्र में उन्होंने देश सेवा की राह पकड़ ली थी। उनका पूरा जीवन भारत देश के लिए समर्पित था। वो कहते थे कि मेरा देश, इसे महान बनाना मेरा धर्म है और हर एक व्यक्ति की यही सोच होनी चाहिए। गोखले जी मध्यम मार्गी थे, लेकिन उनका देश प्रेम किसी क्रांतिकारी से कम नहीं था। उन्होंने हिंसा के रास्ते को नहीं चुना, पर अंग्रेजों के सामने सिर झुकाने से भी इनकार कर दिया था। वे संवैधानिक लड़ाई के जरिए पूर्ण स्वराज हासिल करना चाहते थे और उन्होंने किया भी। उन्होंने सेवेंट्स ऑफ सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि सच्चे देशभक्त तैयार हो सके। वो लोग जो बिना स्वार्थ, बिना डर, सिर्फ मातृभूमि की सेवा करें। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी कहते थे कि गोखले जी के देश प्रेम और निष्ठा ने उन्हें सच्ची प्रेरणा दी है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और उसमें आज हम शीर्षक गीत के रूप में चर्चा कर रहे हैं उन देशभक्ति की बातों का, जिसके लिए हमारे लिए आज दो दो एक प्रमाण हैं देशभक्ति के। महाराणा प्रताप जयंती है आज, और गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती है। तो हम लोग गोखले जी के बारे में बात कर रहे थे। शिक्षा को उन्होंने देशभक्ति का सबसे बड़ा हथियार माना था। वे चीख चीख कर कहते थे कि जब तक हर भारतीय बच्चा पढ़ लिख नहीं जाएगा, देश की गुलामी नहीं टूट सकती। इसलिए उन्होंने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लड़ाई में लगा दिया। 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर उन्होंने ब्रिटिश संसद तक भारत की गरजती हुई आवाज पहुंचाई। श्रोताओं, देश प्रेम कोई किताबी शब्द नहीं है, ये वो आग है जो सीने में धड़कती है। हर सांस में भारत माता की जय की गूंज पैदा होती है। जब कोई कहता है मेरा देश, तो बस उसकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए। असली देश प्रेम यही होता है। देश प्रेम का मतलब सिर्फ झंडा फहराना या गाना गा देना, देशभक्ति गीत गुनगुना देना, ये नहीं, बल्कि एक हर सांस हर धड़कन में यदि देश के लिए कुछ आग हो तो उसको कहते हैं देशभक्ति। स्कूल में पढ़ते हुए अच्छे नागरिक बनना, गली साफ रखना, अपनी देश मातृभूमि को, अपनी धरती माँ को कभी किसी भी कचरे से गंदा ना करना, बिना रिश्वत काम करना, आप अपने कर्म क्षेत्र के अंदर शुद्धता रखना,

अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना, हर कार्य में देशभक्ति आप ला सकते हैं। देशभक्ति का कोई मौसम भी नहीं होता कि आप सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही अपनी देशभक्ति दिखाएं। ये तो आप अपनी दैनिक चर्या की, जिंदगी की, रोज की आदत बनाना चाहिए। जब आप अपनी पढ़ाई में ईमानदारी रखते हैं तो आप देशभक्त हैं। जब गलत काम को देख कर आप चुप नहीं रहते, आवाज उठाते हैं, तो आप देशभक्त हैं। पर्यावरण बचाते हैं तो आप देशभक्त हैं। बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो आप देशभक्त हैं। तो हम ऐसे सभी देशभक्तों को आपके साथ नमन करना चाहेंगे।

तो श्रोताओं, सच्चा देश प्रेम क्या है, ये आप और हम सब में मौजूद है। मेरा देश सबसे अच्छा बने, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी त्याग करना पड़े, मैं करूँगा, ऐसा सोच रखते हुए आज की ये फिल्म संगीत की शाम आपको कैसी लगी, ये ज़रूर सोच के बताइए। आज के समय में सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि हम सोचें बड़े, सपने देखें बड़े, मेहनत करें उससे भी बड़े। हमारा देश युवाओं का देश है, आप और हम सब 140 करोड़ युवा जब एक हो जाएं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में यहीं तक। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं मैं संध्याकालीन सभा के प्रसारण, समय होने वाला है 6:30। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, और उसके पश्चात जिले की चिट्ठी, और उसके पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिएगा आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गईं, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों का समय भी बचता है और पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलता है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें कि लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सचिव रश्मि नवल ने आकाशवाणी को बताया कि इस लोक अदालत में 7.5 लाख से अधिक प्रकरण रेफर किए गए।
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 3 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त DLSAs राजस्थान में 476 बेंचेस का

0: परिवर्तन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में, और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नई न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक अभियोजकों से नए कानून पर विस्तार से चर्चा की गई और नई प्रणाली को लागू करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं पर मंथन किया गया।
2: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा, निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
1: कार्यशाला में राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने लोक अभियोजकों की समस्याओं को सुना और उनके प्रभावी समाधान पर चिंतन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांगजन मामलों और नई आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा है कि आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मसीह ने कहा कि बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तकनीक के उपयोग में न्याय के हितों का उल्लंघन नहीं करने की बात कही। डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और सुबोध लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदों, न्यायविदों और शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान कार्यों को लेकर एक एमओयू भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीलंका के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस ने न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, राष्ट्रहित और जनविश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और ICU जैसे संवेदनशील स्थानों पर लापरवाही बरतने पर संस्थान प्रभारी और यूनिट हेड सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। श्रीमती राठौर ने बताया कि अस्पतालों में संक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से स्टरिलाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और दवाओं के भंडारण के मानकों का पालन करने को कहा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने के प्रकरण में राज्य सरकार ने एक चिकित्सक सहित 2 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही UTB पर कार्यरत एक चिकित्सक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 2 अन्य चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कोटा

0: पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया। इस दल का नेतृत्व कर रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी वहां सर्जरी की गई, जिसके कारण मरीजों में संक्रमण फैला। श्री मीणा ने जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और स्वाभिमान युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। भरतपुर में इस अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाद में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। वहीं पाली जिले के जवाली में रैली निकाली गई और रक्तदान शिविर लगाया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी जिले भीषण लू की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आज जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। कुछ अन्य पश्चिमी जिले भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। दिन के साथ साथ पश्चिमी जिलों में रात का पारा भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीती रात फलोदी में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जोधपुर में पारा 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत कार्मिकों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच का 3 दिन का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि ये डिजिटल जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों के सूचीकरण का काम किया जाएगा, जबकि मुख्य जनगणना अगले साल फरवरी में होगी। प्रशिक्षण में मोबाइल ऐप के उपयोग, लेआउट मैप बनाने और स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रगणकों को फील्ड में मोबाइल के जरिए डेटा दर्ज करने का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। वे आज जयपुर में शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। श्री मित्तल ने विशेष रूप से महिला और बाल अपराधों सहित SC ST से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास पैदा करना होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज भूगोल विषय की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में कुल 76.43% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 3,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,02,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। सृष्टि रचियता जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र नगरी और अपनी जायकेदार कढ़ी कचौरी के नाश्ते के लिए प्रसिद्ध अजमेर जिले की चिट्ठी में हम आपको हालिया खबरों, ताजा घटनाक्रम और जिले की मुख्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे।

0: हर कढ़ी कचौरी के नाश्ते के लिए प्रसिद्ध अजमेर ज़िले की चिट्ठी में हम आपको हालिया खबरों, ताज़ा घटनाक्रम और ज़िले की मुख्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे। चिट्ठी की शुरुआत एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की बात के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये भर्ती परीक्षा इस साल दोबारा से सितंबर महीने में संभावित है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि अब केवल वही 3,83,000 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे जो पहले दोनों पेपर में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। संशोधन की ये प्रक्रिया 16 मई से 30 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल देखते रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 8,900 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने पारदर्शी और सुचारू तरीके से परीक्षा करवाने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। जिले में 16वीं राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया 2027 शुरू हो गई है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वगणना कर सकते हैं। वहीं 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे। जिले में जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले महीने अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक दृष्टि विषय पर विकसित की गई है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने नई तैयार वेबसाइट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालय की सभी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अभिभावकों को सभी शैक्षणिक जानकारियां तथा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अब जीरो कार्बन कैंपस हो गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों एक समारोह में 37 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की। ये कार्यक्रम अजमेर के वैशाली नगर बधिर विद्यालय में आयोजित किया गया। स्कूटी मिलने से इन दिव्यांगों को जीवन यापन, रोजगार और कामकाज में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने 118 जरूरतमंद व्यक्तियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की भी सौगात मिली। चंद्रवरदाई नगर योजना में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले JNIT नर्सिंग स्कूल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शिलान्यास किया गया। साथ ही मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विधायक श्री देवनानी के प्रयासों से केसरबाग पुलिया को चौड़ा और ऊंचा करने के काम के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति मिली। वहीं 3 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइन नाले का काम भी किया जाएगा। जिले की राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 बालकों और 16 बालिकाओं को जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अजमेर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई गया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिक

0: के मानवीय मूल्यां और न्याय राधीन काम ले जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाईयों पालना करन रा हुकम दीना। और प्रदेश में घनखट होना तेज गर्मी रो असर आवता दिना पारो और चढ़वा रा आसार। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरों आज देश भर माय साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाईची। प्राधिकरण रा सदस्य सचिव संजीव पांडे आकाशवाणी समाचार ने बतायो कि लोक अदालत माय राजीनामा लायक मामला ने सुनवाई करी जावे है। वह कहो कि इन अदालतों रो टेम बचबा सागे पक्षकारा ने तुरंत न्याय मिले है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें की लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इस लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट सचिव रश्मि नवली आकाशवाणी ने बतायो कि आ लोक अदालत में 7.5 लाख बत्ता मामला सुनवाई सारू रेफर करी चिया।
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 3 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त DLSAs राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि नई न्याय संहिता रो मकसद सजा देवण री बजाय न्याय दिलावण है। वे आज जयपुर में राखी जी लोक अभियोजकां री राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहा है। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मेघवाल कहो कि कार्यशाला में लोक अभियोजकां सागे नुआ कानूना रे बारा में विगतवार चर्चा करी जी और वाने लागूकरण में आ रही परेशानियां रे बारा में विचार करी जियो।
3: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें PP और APP की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य रा विधि मंत्री जोगाराम पटेल ही लोक अभियोजकां री समस्यावां सुनी अरमारा निपटारा रा बारा में विचार कीनो। कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांग जन जुड़िया मामला और नुआ आपराधिक कानूना ने असरदार तरीकाओं लागू करण रा बारा में खास तकनीकी सत्र राखी चिया। सुप्रीम कोर्ट रा जज न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम लेवण माथे जोर दिनो है। वह आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय मुद्दा माथे राखी चिया 2 दिन रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। न्यायमूर्ति मसीह कहो कि बदलता जमाना सागे नवी तकनीक काम लेवनो जरूरी है, पर तकनीक काम लेवन रे दौरान मानव मूल्यां ने नजरअंदाज नहीं करया जा सके है और न्याय राहितां री अनदेखी नहीं वेवनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और एक गैर सरकारी कॉलेज का नींव रख्या चिया इन सम्मेलन में देश भर रा शिक्षाविद, न्यायविद और शोध करण वाला भाग लिनो। सम्मेलन में श्रीलंका रा पहली वाला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस न्याय व्यवस्था में तकनीक रा काम ने घणो खास बतायो। भारतीय जनता पार्टी रा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा मुख्यमंत्री बन गया है। कोलकाता रा ब्रिगेड परेड मैदान में राखी जिया कार्यक्रम में राज्यपाल RN रवि शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता री शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शिरकत कीनी। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि पश्चिम बंगाल री जनता रो ओ ऐतिहासिक जनादेश विकास

0: सुशासन देशर भला और जनता रा विश्वास री मजबूत अभिव्यक्ति है। ध्यान जोग है कि पश्चिम बंगाल में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी रो राज आयो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा सगला सरकारी अस्पतालों में अब इलाज जुड़िया सगला नियमों री कड़ाईयों पालना ते करी चावेला। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जयपुर में आला अहलकारां सागर मीटिंग कैरर इं बारा में हुक्म दीना। वह कहो कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू सरी खिठौना लापरवाही रे सूरत में संस्थान रा प्रभारी और यूनिट हेड ने सीधा जिम्मेदार ठहराया जावेला। श्रीमती राठौड़ अस्पताल में संक्रमण रोकण सारू कीटाणु खत्म करण बाबत नियमित तौर जोर तीनो। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन रे जरिए जापो भेवन पछे नुवी मायडा री मौतां भेवन और तबियत बिगड़वारा मामला में राज्य सरकार एक डॉक्टर समेत दो नर्सिंग कर्मचारियां ने मुअत्तल कर दीना है। ईसा गई यूटीबी माथे लाग्योड़ा एक डॉक्टर ने नौकरी निकाल दियो चियो है और दो डॉक्टरा ने कारण बताओ नोटिस देर जवाब तलब करी चियो है। दूजीकानी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल काल कोटाचार वाकया रो विगतवार जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना। चिकित्सा शिक्षा विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि मामला री शुरुआती जांच माए चिकित्सा प्रोटोकॉल और प्रक्रिया माए गंभीर लापरवाही री ठा पड़िया पाछे स्त्री और प्रसूति रोग विभाग रा यूनिट हेड डॉक्टर बी एल पाटीदार और यूनिट हेड डॉक्टर नेहा सिहरा ने कारण बताओ नोटिस दियो चियो है। ये वाकया पाछे कांग्रेस पार्टी वारा नुमाइंदा रो एक दल कोटा भेजो। राज्य रा पहली वाला चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणारी अगुवाई माए ओ दल अस्पताल रो दौरो कीनो। ई पाछे वह अस्पताल प्रबंधन माथे घोर लापरवाही रो आरोप लगाता थका कहो कि ऑपरेशन थिएटर और जापा विवरण रा कमरा री खराब हालत रे बावजूद वठे ऑपरेशन करी जिया जी कारण मरीजा माए संक्रमण फैल गयो। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज वन श्रद्धा भाव सागर याद करिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए नमन करता थका कहो कि महाराणा प्रताप रो त्याग और खुद माथे अभिमान युगा युगा ताई सीख देवेला। ई मौके भरतपुर माए शौर्य यात्रा निकाली ची। ई पाछे राखी जी संगोष्ठी माए महाराणा प्रताप री जबरदस्त हिम्मत और देशभक्ति री गाथावां याद करी ची। पाली जिला रा जवाली माई रैली निकाली ची और खूनदान शिविर लगाई चियो। प्रदेश माए जनगणना 2027 री तैयारियां रा तहत कर्मचारियां ने सिखावन देवन रो दौर चाल रियो है। डूंगरपुर माए प्रगणका और सुपरवाइजरा रा तीजा बैच रो तीन दिन रो सिखावन कार्यक्रम आज पूरो भियो। सिखावन रे दौरान जनगणना सारू मोबाइल ऐप काम लेवन लेआउट नक्शो बनावन और स्व गणना रा काम रे बारा माए विगतवार जानकारी दीरी जी। प्रगणका ने घर घर जार मोबाइल फोन रे जरिए डेटा दर्ज करण रो अभ्यास ही कराई चियो। ई दफा डिजिटल जनगणना दो दौर माए करी जा रही है। राज्य माए इरा पहला दौर माए 16 मई 14 जून ताई मकाना री लिस्ट बनाई जावेला जबकि मुख्य जनगणना फरवरी 2027 माए करी जावेला। अरब मौसम प्रदेश रा अतुणी हल्का माए लू बाज रही है जबकि लंकाऊ उगनी हल्का माए आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। जैसलमेर बाड़मेर और फलौदी माए ऊंचो ऊंचो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। कुछ और जिला माए जबरदस्त तावड़ो पड़ रियो है वठे दिन सागे रात्रि भगति पारो सामान्य ऊंचो दर्ज करियो चार रियो है। बीती रात फलौदी माए 31.4 और जोधपुर माए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो कि आवता दिना पारो और चढ़वारा आसार है।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ

0: गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
1: जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल पुलिस रा अहलकारा ने अपराधियां रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई करण और पीड़ित जनता ने तुरंत न्याय दिलावण रा जतन करण रा हुकम दिना है। वे आज जयपुर माय शहर री कानून व्यवस्था बनाई रखण और अपराधा माथे काबू करण रे बारा माय राखी जी मीटिंग माय बोल रहा है। पुलिस कमिश्नर खास तौर महिलावां और बच्चों के खिलाफ होवण वाला अपराधा और अनुसूचित जाति जनजातियों जुड़िया मामला में तुरंत जांच कर और असरदार कार्रवाई करण माथे जोर दिनो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओरों आज भूगोल विषय री प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांति सागर पूरी फेगी। राज्य रा 38 जिला माए फे ई परीक्षा माए 76.43% उम्मीदवार शामिल फिया। आईपीएल क्रिकेट होड रहते आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स पीछे मैच फैला। वो मुकाबलो जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माए अब थोड़ी देर पछे 7:30 शुरू फैला। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश माए आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची मोटी तादाद माए मामला राजीनामा निपटाई चिया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाई पालना करण रा हुकम दीना। और प्रदेश में घनखर ठोणा तेज गर्मी रो असर। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। गौ माता की गौधूली बेला में खेतों की सौंधी महक और चौपालों की गूंज लेकर हाजिर है ग्रामीण जगत कार्यक्रम में गीत गूंजे गाँव गुआर। ये कार्यक्रम समर्पित है हमारे उन सारे अन्नदाताओं की ऊर्जा और उमंगों की उड़ान जिसकी मेहनत की धनक से सोने सी फसलें भी लहलाती नाच उठती हैं। आज डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य आपके ईमेल और फरमाइशी पत्रों के साथ लोक संस्कृति के रंग बिखेरेंगे। आइए अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और लौटते हैं। इसमें शामिल होते हैं आपके ईमेल और फरमाइशी पत्रों पर आधारित लोकगीत। आज के प्रस्तुतकर्ता आप जान ही गए होंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य। सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: कार्यक्रम सुणनाळा सगळा भाया अर बेनाने आप हेताळे भरत कुमार जाजडा अर
1: आपरो हेताळु साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य रा
0: घणान घणा
1: राम राम। भरत भाई,
0: हाँ भाई,
1: देखो सा आज तो शनिवार है।
0: बिल्कुल है,
1: थावर है, थावरो दिन है। थावरो दिन नाले दिन थाने ध्यान ही है कि आपरा जितना भी किसान भाई बहन है ये सिंजारी बेड़ा बिराजोड़ा है था क्या हरिया घरे मायने। और देखो आपरी भाई बेटे हैं बे तो रोटी पोनी तैयारी कर रही है।
0: बिल्कुल,
1: कई गायें दुवारी तैयारी कर रही है।
0: हाँ, कई खीचड़ो ठार रही है, कई टाबरिया जगह थाली ले रहा गया है कि माने खीचड़ो पुरुष दो तो, कोई जगह है पानी री व्यवस्था कर रही है कि रात रा पानी चाहिए तो कुंजियो भरना चोखो, कोई जगह है माचो ढाल रियो है के माचो डालना आता कि अबार सुआ ठंडी ठंडी हवा
1: और बाखल बार परा बैठ गया है आपरो रेडियो खने धर परा और सुनन वास्ते आज कार्यक्रम फरमाइसी पत्र माथे और ईमेल माथे आधारित लोकगीतारो कार्यक्रम गुंजे
0: गांव गवाड़। और आज रे दिन जक पूता है बे आपरे बाबा जी कने या दादाजी कने पगार माथे हिंडा हिंड रिया है और बे जक है गोडाळियार माथे हिंडो हिंडा रिया है और केरिया ले सुन थोड़ी देर रे मैंने बार थारी फरमाइशरा गीतरदासी कही है भाई जक आपरे गीत ने डीक रिया है आपरे नाम ने डीक रिया है फरमाइश ने डीक रिया है कोशिश कर सका कि घणो घणी फरमाइश जकी है बे शामिल करा और आपरो नाम जो को है बाँच सुनावा पण बिसु पहले

0: ए मैं आपने ठिकानो बता दा जका आज ही मैंने मेल भेजना चाहे हाथों हाथ ही चाहे
1: बताओ बताओ
0: के
1: भाई।
0: अन्य मेल भेजो और अन्य नमा भी भाई शामिल कर ले आपने तो मेरे वास्ते में मेल रो ठिकानो बता दूं
1: बता दो नमा भी भाई। जरूर बताओ सा बताओ।
0: तो देखो नमा भी भाई है जका आंखियां लगा बैठा है आपरा आपरी फरमाइशन आई और नमा भी भाई जको है शामिल कर ले।
1: हाँ तो फटाफट मैंने
0: बता दो
1: ईमेल आईडी ताकि हाँ, मैं क्या है कि फटाफट इरा नाम हाँ,
0: तो मेल आईडी जो को है मारो वो है ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com। ये तो खातो बोलियो जन उसे कठाई नहीं पड़ी वेला दोबारा बोलो
1: दोबारा बोल दो।
0: ग्रामीण GRAMIN जगत JAGAT और बीकानेर BIKNER ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com।
1: देखो सा तो सोरो सोरो ठिकानो है और थाने क्या है कि कागज भी लिखो हो पर सागे सागे मेल भी कर सको हो।
0: और अगर कागज लिखना चाहो तो बीरो
1: भी ठिकानो बताओ भरत भाई बीरो भी बता दो।
0: गुंजे गांव गोवाड़ द्वारा केंद्र निदेशक ढोला मारू चैनल आकाशवाणी बीकानेर।
1: देखो सा दोनों बता दिया आप थाने और देखो अब थे ताता ना वो सा ताता तो दिन भर तावड़ो ही गणे रही हो और बढ़ती बाजी और जचार बाजी है जीज को है एकदम बाकरो गए तो कड़मड़ काया जी की नहीं कड़मड़ाहट कर रही है। तो एड़े बखत रमाने सबसे पहला आपने गीतर लो पेश करो नाम तो पछे बोल सा पर पहला गीतर लो बोलो क्योंकि जेठ लाग गए और जेठ लाग गए तो जेठ है माने थान ठाए तावड़ो तपे और तावड़ो भी क्या करे कि चर चर कत्ती छिड़क लिया करे रेत स्नान तंबू अब ताणियों बादलिया आसमान। तो बादलिया तो आसमान में है तो नहीं पर आ है कि आपा लोग बैठा हाँ ई तावड़े सु दूर अड़गा सिंझारी बेड़ा हो गए ई वास्ते जेठ है महीने रो पहलो गीत लो है पद्मा ब्यास रे मुखड़े सु गाइडो मीठे कंठ सु गाइडो गीत है सुनो सा वो गीत।

0: वासा गाजियो गाजियो जेठे
1: कितो
0: फूट रो कितो मनमोहनो गीत सुनाए हैं और ये फरमाइश करी है भोपालगढ़ राजस्थान सु धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा पूजा पड़िहार। और इरे अलावा देखो एक और मेल आया है वो है कर सो है भाईयो
1: जगिया नाम लिखियो को नहीं
0: जगिया नाम
1: पंजाब लिखियो खाली।
0: अच्छा अच्छा वडिंग खेड़ा पंजाब सु मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा।
1: इरे लो एक नियमित श्रोता है सुभाष खत्री जको भी कमला कॉलोनी सु भेजो है माने। और इरे अलावा और भी है जका बातर सुनाओ नमा भी भाई
0: एक आया है बीकानेर से आया है देखो कागज भी आया है देखो निर्दोष व्यास शोभा व्यास लेखक व्यास और वंशिका व्यास रो।
1: हाँ
0: और मेरे अलावा राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर से कागज आया है अशोक बब्बर पवन राजेश बब्बर अजय राहुल और मनु बब्बर। और जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर से हमेशा दाई फिर कागज आया है अशोक कुमार शाही श्रीमती संतोष शाही राजश्री शाही और गौरव शाही।
1: इर अलावा वरण नगर कोलापुर महाराष्ट्र सु अमित नारायण सांगली जिला सु अल्ताफ हुसैन सैफुल्ला और यहाँ साथी गांव घमंडिया तहसील सूरतगढ़ गंगानगर सु जगदीश ढुकिया प्रमिला ढुकिया ज्योति सरिता तमन्ना सचिन विष्णु और शिवम ढुकिया।
0: तो भरत भाई अब अगला नाम आप लेवा पड़ और अगला गीत लेवा पड़ उनसे पहला क्या है कि संदेश है बे सुनाना जरूरी
1: बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी संदेश से पहले भाई लोग ने कह दूं कि नमामि भाई मेल रे माथे आंखें गड़ा उड़ा बैठा रही
0: और
1: अगर आप अबार भी माने फरमाइश भेजो हो तो नमामि भाई शामिल कर देसी
0: भरत भाई ज्या ही बता सी तो मैं भी ने शामिल कर और नाम बोल वाच देसो
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और समानता यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा यह उसकी आय लिंग उम्र शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा

0: बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है, दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43% संपत्ति है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: तो नमा भी भाई, देखो मेल जका है घना ही है, कागज घना ही है, पण अब देखो पहले जका भी तो नाम बांस दिया। अब आगलो थे गीतर तो सुनो, पछे फिर बाद बियारे भी नाम बांस।
4: तो पहला मैं गीतर लो सुनो, आपने सदानंद सामरिया रे गायडो बाई सारा बीरा
3: सुनो फिर।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: तो सा अबार आपा एक गीत लो सुनियो हो, बैसारा बीरा सदानंद चामरिया गाइडो और इरे वास्ते जी की फरमाइश करी है मेल माथे आई थी बात थी अपाराठा जी का नियमित सेवता है शीतला गेट बीकानेर सु मोहम्मद सफी खींची, मोहम्मद शरीफ खींची, मोहम्मद सुनेज खींची, मोहम्मद आजम खींची, नूर फातमा खींची, अकमल हुसैन बियानी, एम सफ़ी मिस्त्री, मोहम्मद हनीफ टाक यहाँ मेल करिए था। और साथ ही साथ एक मेल और आयो है आदरणीय, लिखे भी है आदरणीय प्रसारक महोदय जी ने राम राम, तो आपने भी घना घना राम राम सा। और जिसको मेल आया है गाँव खोखरावाड़ी गंगानगर से।

0: विनोद बारसा, विशाल बारसा, विकास बारसा, रोशनी बारसा।
1: ये अलावा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ छू भी माने एक मेल भेजो है, कार्यक्रम शुरू यहाँ पर है। टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर ठाकुर, कैथरा और डॉक्टर अमनदीप और कालकासू, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।
0: और इसके अलावा गांव फरासी जिला हिसार से देखो आए हैं मेल, और मेल भेजिए है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, सीमा मिश्रा रो गीत रे वास्ते फरमाए थो, पर ठीक है वो भी सुन सापा। इनला कागज भी देखो आया है, कागज छाट लो। और गांव कुंदनपुरा से देखो जिला बाड़मेर राजस्थान से आया है जगदीश सुंबरा, मोहनलाल, नरेश कुमार, निम्बा राम और सगड़ा सुंबरा परिवार वाला।
1: इन अलावा छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा सु राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन, बाबा रामदेव रोड गंगा शहर बीकानेर सु दिव्या सारस्वत, मुरली सारस्वत, मनोज सारस्वत, लता सारस्वत और इन अलावा मुक्ता प्रसाद सु जुल्फी कारली, दादू दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड सु मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा नवाज और साथी, और एक हरियाणा सु आयो है गाँव रो नाम पढ़ियो को नहीं नमामि जी थे बाँचो कागज हो।
0: इन मैंने गाँव रो नाम तो दियोड़ो को नहीं पर नाम जरूर दियोड़ो है साहिल कागरा, मोनी कागरा, प्रिंट बॉट सीताराम कागरा, तन्वी बॉट और चक 15 पी एस श्री जिला गंगानगर सु राजस्थान सु आये है सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, रॉबिन और सिडनी ऑस्ट्रेलिया सु अदृश्य पाल।
1: तो सा ए तो हा ए नाम जका थोड़ी देर पहले गीतर लो सुनो भी रवास्ते। अब सुनो आगलो गीतर लो और पछे बता सा अफरमाइज केरी ही।

0: तो गीतड़ तो सुनियो सा और इर वास्ते फरमाइश भेजी सरधना मेरठ सू आदि जैन अंश जैन भव्य जैन बेबी अव्यार अंशिका जैन इर अलावा अनिल जैन संयम जैन मुस्कान जैन मास्टर जीवीएम जैन यार परिवार रहे रायपुर छत्तीसगढ़ सू विनोद वंडलकर वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर
1: भोपालगढ़ राजस्थान सो आए हैं धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा पूजा परिहार और मुजफ्फरपुर बिहार सो आर्यन राज रोहित राज हैप्पी आनंद टाउनशिप सेक्टर 8 बिलाई सो अनुश्री प्रदीप यामिनी और वीणा कालिया गांव जाखोद राजस्थान सो शंभुदयाल खटक विमला देवी अमरजीत खटक सुंदरलाल खटक योगेश कुमार खटक दीपक कुमार खटक और पूजा कुमारी पूजा खटक
0: ग्राम पोस्ट मऊ तहसील मांगरोल जिला बारा सो श्रवणलाल योगी श्रीमती गायत्री योगी सोनिया उमा मयंक और योगी परिवार सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान सो रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान और बेबी गर्वी
1: गोविंदपुरा निमका थाना सो आए है दातार सिंह संगीता तुषार सिंह रिंकी शेखावत सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुना नगर हरियाणा सो देखो आए है मिल विनय मोहन मीनाक्षी प्लोमा और ईशानीरो
0: इर अलावा मारखने और भी आया है मेल जकार
1: देखो छत्तीसगढ़ सो अबार आए है दत्तरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ सो मेल आया है हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि वर्मा नोखेलाल वर्मा और सागे सागे देखो एक और आए है
0: जलालाबाद पश्चिम सो आया सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित
1: लौसा और एक और आया है आथो आथी गांव गोविंदगढ़ माझी वाला श्री कर्णपुर राजस्थान सो और आप फरमारी है कि भाई साहब जी राम राम सा तो राम राम आपने भी बहुत बहुत राम राम मुगड़ा मुगड़ा राम राम और आप लिखे कि कोई भी बढ़िया भजन सुना तो देखो भजन तो आपने आखिर में सुना ही सा निश्चित तौर से पर नाम आप बताऊँ मैं राजू टूटेटा खुश दिल उर्मिला टूटेटा गुड्डू जीनू मन्नू सेव सेठी कर्णपुरी स्माइल

0: टूटेजा, पाल मिस्त्री, कर्णपुरी, पवन गुज्जर, गांव 34 एसटीजी पिलीबंगा सु प्रेमी बिशन लाल मेहरा, अमन समीर, रितु मेहरा, चाहल कला पंजाब सु अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर और अंबा चाहल।
1: और अबे भाई लोगा निजर करा आपने आगलो गीतर लो पच बता सा अफरमाइज के रही।

0: तो सा आबार आप लोग ही सुनियो हो सुमन नाम नायक रो गाइडो रुमाल
1: और इर वास्ते फरमाइश भेजी गांव सेंसवास जिला झुंझुनू सु नेकीराम रेवाड़ संतोष और ममता
0: और इन अलावा गांव गोविंदगढ़ माझीवाला सिकरणपुर राजस्थान सु राजू टूटेजा दिल खुश उर्मिला टूटेजा ए तो नाम सापा बोल दिया बार बार आ रही है फिर मिल आ गया दिखे मिला हाँ,
1: एक पायला किला जिला बाड़मेर सु मोहन लाल प्रजापत माणक दरिया कुमारी उषा बाला और यारा साथी
0: नोहर नोहर जिला हनुमानगढ़ सु देखो राजस्थान सु नरेंद्र सुथार मनोज सुथार शीष पाल सुथार और बारा भाईला सागीवाड़ पवन कुमार शंकर बिहारी शिव कुमार और सोनू मिस्त्री महेंद्र सुथार
1: अरे खिंदासर तहसील कोलाय सु भी मारखने एक मेल है कानाराम चौहान रो और गांव कलानाथ तहसील भादरा सु भी एक मेल है जिको नमामि भाई थे बाचो
0: हनुमानगढ़
1: तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ गांव कलाना
0: योगेश देखो योगेश नाम आया है कड़वासरा सचिन कड़वासरा सतीश कड़वासरा विक्रम कड़वासरा और सुनो अतो भी लाले गीत लो थो और अगलो गीत बजावलानी बियर भी नाम बताए दो
1: हाँ अबार बांचू
0: हाँ।
1: देखो अगलो जो को है आप फरमाइश रवास्ते मने अडीक राख रिया है गांव टूंकिया तहसील सिंधरी जिला बाड़मेर सु कृष्ण कुमार डाबी भूपत कुमार डाबी राधा देवी डाबी विक्रम और अर्चना देवी बेताब रेडियो सूता क्लब बिहार सु वसीम अक्रम यामिनी खातून और गुड़िया खातून और झज्जर हरियाणा सु बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत भाटिया मयंक भाटिया और पानीपत सु नरेश मल्होत्रा
0: और इन अलावा गांव पजौनिया जिला जलौन उत्तर प्रदेश सु सत्येंद्र कुमार संसोलिया दुर्गापुर बाबली सु गजानन येले

0: तो सर देखो अबार आप गीतल लो सुने थो माने बीकानेर ओड़ू घनी आवे अमर सिंह रो गाइडो और ईराज का कागज भेजन आला था मेल भेजन आला नाम बोलिया। देखो मेल तो और भी घनी आ रही है लगो लग आ रिया है कागज भी आईड़ा है बखत तो कोनी पर अब चूंकि है मारखने बखत बीतो बखत मुझे मैं नाम बोलता तो भद भाई बताओ कई दो चार नाम।
1: हाँ देखो जय जिने

0: वणकर परिवार। इर अलावा कर्नाटक हुबली सू भी है, कादर सोहेल और आसिफ रो, और मजनू टीला दिल्ली सू कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलंक और आकांक्षा मलंक।
1: और सा सिंजारी बेड़ा हो गई है और बकत हो गया है आपसे सीख लेवण रो। फिर मिलसा लिखपण, आप कागज लिखता रहा और मेल भेजता रहा और मैं इन तरीके से आपसे मिलता जुलता रहसा।
0: और आज के कार्यक्रम में देव सा सीख आप रहे तले भरत कुमार जाजड़र
1: और डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य रा घना घना
0: राम राम, राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:45 होते हैं। ये बेला है सांध्यकालीन बेला, यानी कि ऐसी बेला जिसमें सब लोग मिलकर के हम लोग अपने देव ईशु ईश का और हमारे जितने भी पूजनीय हैं उनका नमन करते हैं। तो आइए सुगम संगीत कार्यक्रम में प्रारंभ करते हैं इसी नमन से।

शनिदेव के इस आरती के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर संध्या के 8 बजने वाले हैं। तो बीकानेर की धड़कनों को शब्दों में पिरोता यहाँ की कला, साहित्य और संस्कृति का अनूठा दस्तावेज सुनने के लिए समय आ गया है। कार्यक्रम का नाम है बीकानेर दर्पण। आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर आपके सामने फिर से हाजिर है राजस्थानी मिट्टी की खुशबू, ऊँटों की रेतीली कहानियाँ, हवेलियों की नक्काशी, कविताओं का जादू और बीकानेर की समृद्ध विरासत, सब कुछ एक ही इस दर्पण में। ढोला मारू की इस पावन मिट्टी से बीकानेर की सांस्कृतिक आत्मा का दर्पण होता है। आपके श्री महेश उपाध्याय और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम साथ साथ संजोएंगे बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत को। तो आइए इस पावन यात्रा पर चलते हैं बीकानेर को और गहराई से जानने, समझने और महसूस करने के लिए। साथ मिलकर सुनते हैं अपने शहर का सच्चा स्वरूप। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की है और इसे स्वर दे रहे हैं श्री महेश उपाध्याय, संयोजन अमित सिंह का है। तो लीजिए, आनंद लीजिए बीकानेर की इस रस्म यात्रा का, बीकानेर दर्पण की 143वीं कड़ी में।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, इस अंक में सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे कार्यक्रम में जहां 6 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। जी हां, ये स्थान है बीकानेर का धरणीधर मंदिर ऑडिटोरियम। दिनांक 3 मई को इस कार्यक्रम में साहित्यकार एडवोकेट के व्यास शिल्पी की 6 कृतियों का लोकार्पण एक साथ हुआ, जिनके शीर्षक हकीकत, हस्ताक्षर, हालात, मन का महाभारत, केशव और अनंत की ओर है। स्वागत उद्बोधन देते हुए वरिष्ठ शिक्षाविद यशपाल आचार्य ने कहा,
1: हरेक की अलग अलग सोच होती है, कौन किस भाव में लिखता है वह महत्वपूर्ण होता है, न कि आपके क्या समझ में आता है, क्या समझा जाए उस माने नहीं के विधेय या जो पीड़ा होती है तब उपजता है गान, तो उस आधार पर है कि कब क्या किस भावना से लिखा गया है, उसी संदर्भ में हम उसको लें तो इसका रसवादन हमें अधिक मिलेगा। पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन, जय हिंद।
0: इसके बाद अतिथियों के कर कमलों से 6 पुस्तकों का विमोचन किया गया।
2: 6 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ जिसके हम साक्षी बने।
0: अपनी पुस्तकों पर लेखन यात्रा की चर्चा करते हुए आप हैं एडवोकेट के व्यास।
3: जब मेरे मन और मस्तिष्क पर विचारों का एक प्रवाह, चाहे वो खुशी का हो या गम का हो, प्रवाहित होता है तो मैं पृष्ठों पर अपने विचारों को अंकित करता हूँ और ऐसा मैं अपने बचपन से करता आ रहा हूँ। मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ। मैं लेखकों में से नहीं हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न मैं साहित्य विद्या को जानता हूँ, न मैं निबंध को जानता हूँ, न मैं कविता को जानता हूँ, न मैं कहानी को जानता हूँ। मैं लिख देता हूँ और लिखे हुए का निर्णय आप लोगों में से बैठे लेखक ही करते हैं कि आपने ये लिख दिया, आपने ये लिख दिया। जब मैंने अपनी पुस्तकें छपाने का प्रयास किया, मुझे लगता है मैं कविता से ज़्यादा अच्छी कहानियाँ लिख पाऊँगा, क्योंकि मैं कहानियाँ अपने आसपास से उठा लेता हूँ और उसको कहानी का रूप दे देता हूँ और कहानी बन जाती है।
0: कार्यक्रम के अध्यक्ष साहित्यकार सरल विशारद, मुख्य अतिथि व्यंग्यकार बुलाकी शर्मा, विशिष्ट अतिथि

0: डॉक्टर तनवीर मालावत, गौरीशंकर व्यास और शिवबाड़ी लालेश्वर मठ के संत श्री विमर्शानंद महंत थे। 6 पुस्तकों में से पुस्तक मन का महाभारत पर अपनी टिप्पणी करते हुए आप हैं श्रीमती मुक्ता तेलंग।
1: अंतर मन के कुरुक्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगी कि महाभारत का युद्ध चला था 5000 वर्षों तक पहले, लड़ा गया और ऐतिहासिक युग, ये जो एक ऐतिहासिक युद्ध था वो एक महाभारत का युद्ध है जिसे हम सभी जानते हैं। लेकिन एक युद्ध ऐसा भी है जो हमारे हम सबके मन में चलता है, अंतर मन में हमेशा एक युद्ध चलता है। जब भी कोई बात आती है या कोई भी ऐसा संदर्भ आता है, सामाजिक संदर्भ हो, पारिवारिक संदर्भ हो, तो मन में हमारे प्रतिपल एक युद्ध चलता रहता है। तो अंतर मन में प्रतिपल चलने वाली मनोवैज्ञानिक घटना एक मन का महाभारत है। बाहरी युद्ध तो एक समय सीमा में समाप्त हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं, जैसे महाभारत का युद्ध था, एक समय सीमा में समाप्त हो गया। जब हम मन का महाभारत कहते हैं तो इसका अर्थ है भावनाओं, विचारों, नैतिकता, कर्तव्य और महत्वाकांक्षाओं के आपसी टकराव से। तब हमारा मन बन जाता है कुरुक्षेत्र और सकारात्मक नकारात्मक विचार पक्ष विपक्ष रूपी सेनाएं बनकर आमने सामने खड़ी हो जाती है। आपने कभी कभी भी फिल्मों में भी देखा होगा कि उसकी आत्मा, व्यक्ति की आत्मा ही उससे सवाल जवाब करती है। तो कभी कभी मन के महाभारत में ऐसी स्थिति हम सभी के सामने आती है। आपसी टकराव यानी अंतर्द्वंद बन जाता है मन का महाभारत। अतः काव्य संग्रह का शीर्षक जो है मन का महाभारत, मुझे लगता है बिल्कुल सटीक है, सही है।
0: कविता संग्रह हकीकत पर विचार रखे डॉक्टर रेणुका व्यास ने।
2: एडवोकेट आदरणीय के व्यास शिल्पी साहब का आज का लोकार्पित काव्य संग्रह हकीकत उनके जीवन संघर्षों, पीड़ाओं, जीवन की विषमताओं और विडंबनाओं को वाणी देता है। इस काव्य संग्रह की 49 कविताएं, विविध वर्णी कविताएं जीवन की तमाम विपरीत परिस्थितियों के मध्य जिजीविषा को बचाए रखने का हौसला दिखाती हैं। जीवन के कटु यथार्थ से लहूलुहान भी बेखौफ चलते चले जाने की इच्छा को बार बार दोहराती हैं। हकीकत सभी के लिए हकीकत होती है, खुरदरे चेहरे वाली, दिल को ठेस पहुंचाने वाली, जीने की चाहत से भरे कदमों को घायल और लहूलुहान कर देने वाली। मनुष्य कल्पना के आसमान में चाहे कितना ही उड़ ले, उतरना उसे हकीकत की कठोर जमीन पर ही पड़ता है। कविवर को बधाई देते हुए मैं आशा करती हूँ कि आगामी काव्य संग्रह में कविताएं अधिक परिष्कृत रूप में सामने आएंगी, अनुभव अनुभूति बनेंगे, भाव व्यक्ति से समष्टि की यात्रा करेंगे, दृष्टि का कैनवास निज से पर और पर से सर्व की ओर विस्तृत होगा।
0: कहानी संग्रह केशव पर टिप्पणी की कृष्णा आचार्य ने।
3: जीवंत संघर्ष कहानी संग्रह है केशव। हिंदी साहित्य के महान कहानीकार प्रेमचंद जी का मानना है कि कहानी एक ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेलें सजी हो, बल्कि यह एक ऐसा बगीचा है जिसमें एक ही गमले का माधुर्य यानी सौरभ अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। अर्थात कहानी एक आख्यान है और उसके वर्णन की शैली पाठक एवं श्रोता को रसमग्न कर देती है। वह संक्षिप्त हो, लंबी हो, लेकिन एक ही बैठक में समाप्त की जाती है पढ़कर या कहकर।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक श्री हरिशंकर आचार्य ने हस्ताक्षर पुस्तक पर अपनी बात कही।
4: इसका शीर्षक मैंने रखा है रिश्तों, रिक्तताओं और संवेदनाओं के हस्ताक्षर। कविता केवल शब्दों का विन्यास नहीं होती, बल्कि यह हृदय की अनुभूतियों, मन के द्वंद्व और जीवन के सूक्ष्मतम सत्य का साक्षात्कार कराती है। जब जीवन के अनुभव भीतर गहराते हैं, जब संवेदनाएं आकार लेती हैं, तब वे कविता के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। भारतीय साहित्य की परंपरा का अवलोकन करें तो पाएंगे कि यह परंपरा अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रही है। वेदों की ऋचाओं से लेकर भक्ति काल के निर्गुण सगुण काव्य तक और आधुनिक युग की आत्मानवेशी रचनाओं तक कविता सदैव मानव की संवेदनाओं की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। कबीर की वाणी में सत्य का निर्भीक उद्घोष हो या मीरा की भक्ति में आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा, कविता ने हर युग में समाज को दिशा देने का काम किया है। इसी साहित्यिक परंपरा में एडवोकेट के व्यास शिल्पी का काव्य संग्रह हस्ताक्षर

0: एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने आता है। हस्ताक्षर शीर्षक अपने आप में कुछ कहता है। हस्ताक्षर केवल पहचान नहीं बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व, उसकी अनुभूति और उसके जीवन के प्रमाण होते हैं, जो किसी घटना में उसके साथ होने का साक्ष्य होते हैं। हस्ताक्षर किसी भी स्थिति में भागीदारी निभाने की सहमति और हामी होते हैं। और एडवोकेट के व्यास शिल्पी ने इस काव्य संग्रह में संकलित 40 कविताएं कवि के जीवनानुभवों, स्मृतियों और भावनात्मक गहराइयों के ऐसे ही हस्ताक्षर के रूप में प्रस्तुत की हैं, जो पाठक के मन पर अपनी छाप छोड़ते हैं।
1: इसी प्रकार आप हैं विप्लव व्यास, कविता संग्रह हालात पर अपने कथन कहते हुए।
2: इस संग्रह में कुल 40 रचनाएं हैं, जिनमें से 8 कोरोना शीर्षक, 2 परिवेश शीर्षक की व 2 मजदूर शीर्षक से रचनाएं शामिल है। इस संग्रह की बड़ी बात है कि कवि ने उक्त कविता संग्रह लोकनायक, संघर्षशील, समाजवादी विचारधारा के पक्षधर, बीकानेर के विधायक रहे स्मृति शेष मुरलीधर जी व्यास को समर्पित किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है जो वे लिख रहे हैं समर्पित करते हुए। वे लिखते हैं कि जिनसे मुझे लेखन के माध्यम से देश, दुनिया, समाज, परिवार, राजनीति और मानवाधिकारों के प्रति आवाज बुलंद करते हुए स्वयं को अभिव्यक्त करने का संबल प्राप्त हुआ, यह समर्पण की पंक्तियां लेखक के लेखन कर्म की ओर इशारा करती है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले चरण में है आकाशवाणी के 90 वर्ष। जैसा कि आपको पता है कि आगामी 8 जून को आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी के तहत भारतवर्ष में पिछले 1 वर्ष से विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आकाशवाणी केंद्र बीकानेर, यानी जिसे आप अभी सुन रहे हैं, बीकानेर केंद्र ने भी आकाशवाणी के गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में पिछले 1 वर्ष से कई कार्यक्रमों के आयोजन किए हैं और ये लगातार जारी है। दिनांक 4 मई को आकाशवाणी बीकानेर द्वारा आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्थानीय वेटनरी ऑडिटोरियम में शास्त्रीय संगीत संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सितार और सरोद पर जुगलबंदी की श्री असित गोस्वामी और श्री अमित गोस्वामी ने, तबले पर संगत की श्री शब्बीर हुसैन ने। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुल गुरु डॉक्टर सुमंत व्यास। आयोजन में उप महानिदेशक अभियांत्रिकी क्लस्टर प्रमुख श्री रामजी लाल असवाल, आकाशवाणी बीकानेर के सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अमित सिंह, श्रीमती मीनाक्षी मलिक, कार्यक्रम अधिशासी श्रीमती बरखा थानवी व्यास, श्री रेवंत राम लेगा, श्री अशोक बिश्नोई उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन किया कविता वर्मा ने। आइए अब आपको भी उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लिए चलते हैं।
3: दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अनुरोध करेंगे आकाशवाणी बीकानेर के क्लस्टर प्रमुख श्री रामजी लाल असवाल से कि वह हम आगंतुकों का स्वागत अपने शब्दों में करें।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी बीकानेर की ओर से आयोजित की जा रही इस शास्त्रीय संगीत सभा में हम यहाँ उपस्थित सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आकाशवाणी का अपना ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आकाशवाणी ने निरंतर कला और साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। 90 वर्ष के इस सफर में आकाशवाणी ने अपने आप वचन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ किया है और देश के समग्र क्षेत्र को अपने माध्यम से उन्नत करने का प्रयास किया है। आज की सांस्कृतिक संध्या में आज के मुख्य अतिथि श्री सुमंत व्यास जी का हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय में दिया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के कलाकार डॉक्टर असित गोस्वामी जी शब्बीर हुसैन का, जो आज की शाम को यादगार बनाने वाले हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ।
1: आयोजन के मुख्य अतिथि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु डॉक्टर सुमंत व्यास ने आकाशवाणी के गौरवशाली इतिहास और भूमिका पर चर्चा करते हुए अपनी बात कही।
5: सम्माननीय

0: आकाशवाणी के सभी पदाधिकारीगण, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, जैसा कि उद्घोषिका जी ने पहले बताया था कि आकाशवाणी एक राष्ट्रीय आवाज़ है। मेरे समझ में आकाशवाणी राष्ट्रीय अस्मिता का भी प्रतीक है। समय उतार चढ़ाव लाता है, परंतु किसी भी स्थिति में सभी तूफान और झंझावातों को झेलकर अगर कोई सरकारी संस्थान पिछले 90 साल से सर उठाकर खड़ा है, तो उन गिने चुने संस्थानों में आकाशवाणी का भी।
1: और आइए अब सुनते हैं सितार और सरोद पर जुगलबंदी। कलाकार हैं अमित गोस्वामी और असित गोस्वामी। तबले पर संगत की है शब्बीर हुसैन ने। प्रस्तुत है संपादित अंश।

0: कार्यक्रम में बीकानेर के अलावा बाहर से पधारे श्रोताओं ने कार्यक्रम की तारीफ की। अंत में श्रीमती मीनाक्षी मलिक, सहायक निदेशक कार्यक्रम, ने आगंतुकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा,
1: मैं आकाशवाणी बीकानेर की तरफ से सभी सभागण को धन्यवाद देती हूँ। हमारा विशेष धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथिगण श्री सुमंत व्यास जी को रहेगा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे कलाकारों को, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया। श्रोताओं के बिना कलाकार अधूरे हैं, तो मेरा धन्यवाद इन सभी श्रोताओं को है जिन्होंने कार्यक्रम में आकर हमारे कलाकारों की हौसला अफजाई की। आखिर में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी असवाल सर को, बाटन सर को और अमित सर को और सभी स्टाफ को, जिनके मार्गदर्शन के बिना यह कार्यक्रम संभव हो ही नहीं पाता। धन्यवाद और शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, इसी प्रकार आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 8 मई को सुबह वॉक का आयोजन किया गया। सुबह 6:15 पर डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम के पास स्थित आकाशवाणी केंद्र से शुरू होकर जूनागढ़ के आगे से होते हुए वापस केंद्र पर आकर विसर्जन हुआ। उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख रामजी लाल असवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वॉक का उद्देश्य था आकाशवाणी की सेवा यात्रा को स्मरण करना और स्वास्थ्य जागरूकता, सामूहिक एकता तथा सांस्कृतिक विरासत के संदेश को आगे बढ़ाना। वॉक के समापन पर प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह के रूप में मेडल दिए गए। स्थानीय नागरिकों और श्रोताओं ने आयोजन को

0: सकारात्मक अनुभव बताते हुए कहा कि यह गतिविधि स्वास्थ्य और सामुदायिक जुड़ाव दोनों को मजबूती देता है। श्रोताओं, दिनांक 9 मई यानी आज ही प्रातः 8:30 बजे स्थानीय लक्ष्मीनाथ मंदिर में लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास एवं पर्यावरण समिति द्वारा उन चित्रकारों को सम्मानित किया गया जिन कलाकारों ने बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर की दीवारों पर चित्रकारी के माध्यम से विभिन्न संदेश दिए और बीकानेर की परंपरा और संस्कृति को उजागर करने के साथ साथ इस ऐतिहासिक स्थल को सुंदर बनाने का काम भी किया। आइए चलते हैं लक्ष्मीनाथ मंदिर, क्या कहते हैं आयोजक और सम्मानित होने वाले चित्रकार।
1: राम कुमार जी भादाणी, बीकानेर के स्थापना दिवस पर लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में यहाँ पेंटिंग का कार्य किया गया जिससे दीवारें जो है वो एकदम बीकानेर की कहानी कहते हैं, बीकानेर का इतिहास बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपकी पेंटिंग में क्या खास बात है?
2: नमस्कार, मैं चित्रकार राम कुमार भादाणी। बीकानेर के स्थापना दिवस पर हम सभी कलाकारों ने यहाँ अपना सहयोग देकर चित्र बनाए हैं जिसमें हमारी थीम थी हमारा प्यारो बीकानो, जिसमें स्वस्थ रहने के लिए हमने योग के ऊपर और प्राकृतिक बादल के रूप में बीकानेर की प्राचीन धरोहर जो रामपुरिया वैली है, कॉलेज धरोहर की सी झील है और कोर्ट गेट का परिदृश्य है, देशनोक का है और अपने बीकानेर का जय जंगल दरभाषा का जो प्राचीन लोगो है उसको मैंने सुनहरी कलम में बनाया है और बीका जी की तीर्थ स्तंभ के रूप में बनाया है। ऐसे करके हम लगभग 15 से 25 कलाकारों ने, जूनियर और सीनियर कलाकारों ने मिलकर ये कार्य किया है जिसमें सभी कलाकारों ने अपना अपना योगदान दिया है। यह कार्यक्रम है जो लक्ष्मीनाथ पर्यावरण समिति के सहयोग से किया गया है जिसमें चित्रकार धर्मा स्वामी संयोजक के रूप में थे और मैं खुद चित्रकार राम कुमार वादने उप संयोजक के रूप में था। हमारे साथ 15 सीनियर कलाकार थे और 15 जूनियर कलाकार थे। सभी कलाकारों ने अपना अपना योगदान दिया जिसको लेकर के आज ये सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है जिसमें गणमान्य द्वारा सभी चित्रकारों को सम्मानित किया जाएगा।
1: यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में जो है पेंटिंग की गई थी और आपके ग्रुप ने, आपके जो है संयोजन में ये काम हुआ, क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं यही कहूँगा बीकानेर के सभी चित्रकारों को कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जहाँ पे क्या है कि वैसे प्रशासन करता ही है और अपने से भी जितनी हो सके हेल्प तो वो करनी चाहिए हेल्प, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये दीवारें वगैरह गंदी हो जाती है, लोग आते हैं देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ तो बहुत बड़ा भ्रमण पथ है बीकानेर की नाक है और इसमें हमने ये कार्यक्रम किया था 31 कलाकारों ने जिनका आज सम्मान समारोह है और बीकानेर नगर स्थापना दिवस पे ये कार्यक्रम हुआ था। और बाकी मैं सभी जनता से यही कहूँगा कि स्वस्थ रहें और ये क्या है कि इनमें सहयोग करें साफ सफाई में। अभी जो ये चल रहा है नशे का और का तो ये भी क्या है कि थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि लोग आते जाते रहेंगे देखेंगे तो ये क्या है कि सुंदरता भी बने रहेगी और इससे भी बचाव होगा।
1: जय श्री जी सुथार। और मैं देख रहा हूँ यह लक्ष्मीनाथ मंदिर में दीवारों पर पेंटिंग की गई और उसमें बीकानेर का इतिहास और बीकानेर की संस्कृति और परंपरा को दिखाया गया है। आपने भी एक चित्र बनाया, अपने सबसे पहले तो आप अपने चित्र के बारे में बताएं कौन सा है और वो क्या कहता है?
4: मैंने यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह जी का चित्र बनाया है। महाराजा गंगा सिंह जी हमारे बीकानेर के राजा है जो हमारी एक इतिहास की संस्कृति है, तो मैंने अपनी संस्कृति को यहाँ पे एक वॉल के रूप में प्रकट किया है।
1: आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे?
4: सम्मानित यहाँ ये जो मंच है ये हम जैसे कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए है। छोटे स्टूडेंट आते हैं, हम जैसे कलाकार को एक मंच मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है।
5: मेरा नाम लक्ष्या है।
1: लक्ष्या, आपने कौन सा चित्र बनाया और वो क्या कह रहा है पहले तो आप उस पर बताएं।
5: मैंने करणी माता का चित्र बनाया था। जैसा कि सबको पता है कि बीकानेर में सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारी करणी माता है, उनके देन से हमारा सब कुछ चलता है तो मैंने उन्हीं को चित्रित किया था।
1: जब आप बना रहे थे कैसा लगा, कितनी मेहनत आपने की?
5: वैसे तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था पर बनाते टाइम इतना अच्छा लग रहा था ना।

0: क्योंकि मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिलना हर किसी को नहीं मिलती ना, बहुत अच्छा लगा था मुझे।
1: आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, क्या अनुभव कर रही है?
0: अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिली, इतने लोगों से मिली, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: लक्ष्मीनाथ मंदिर में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे चित्र बने हुए दीवार पर, और वो बीकानेर की संस्कृति और परंपरा को लेकर के भी अपनी बात कह रहे हैं। सत्य प्रकाश जी आचार्य, क्या कहना चाहेंगे ये कलाकारों ने चित्र बनाए हैं उनके लिए और हमारी परंपरा और संस्कृति के बारे में?
2: बीकानेर स्थापना दिवस अवसर पर आज चित्रकारी कार्यक्रम आयोजित करे गए और बीकानेर कलाकार चित्रकार बहुत बढ़िया चित्रकारी अठे प्रदर्शित करी है। ईसो लगे कि साक्षात रूप से आप सब बोल रही है चित्रकारी जी की कठिन चित्रकारी है, बीकानेर कई संस्कृति है। तो बीकानेर विशेषता बीकानेर स्थापना दिवस अवसर पर शुरू हुई, आज जिका ये चित्रकारी करी है बीकानेर सम्मानित करने का कार्यक्रम लक्ष्मीनाथ पर्यावरण समिति जी की है, विकास समिति यहाँ सम्मानित करने का कार्यक्रम करिए, बहुत बढ़िया बात है, करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। ये प्रोत्साहन स्वरूप आज रो कार्यक्रम रखे गए और मैं समझू बीकानेर जी की पहचान है अपने आप में, अठे कलाकारी कोई कमी को नहीं, अठे साहित्य धर्मिया कोई कमी को नहीं, बहुत अद्भुत और अलबेलो शहर बीकानेर है। अठे लोगों की पहचान भी मस्त मौला रूप में माने बीकानेर निवासियों की पहचान हुए।
3: मेरा नाम आरती बादानी है और मैंने यहाँ पे जो करणी माता टेम्पल है वो बनाया है।
1: जब आपने चित्र बनाया उस समय क्या सोचा आपने कि एक लक्ष्मीनाथ मंदिर सार्वजनिक स्थल पर आप चित्र बना रही हैं?
3: हमने ये सोचा है कि ये जो पेंटिंग है वो सब लोग पार के तो सब लोग देखेंगे, और ये जो पेंटिंग है उसमें जो भावना है हमारी जुड़ी हुई है माता जी के प्रति, और एज यूजल सबकी जुड़ी होती है माता जी के प्रति, और करणी माता का मंदिर है तो बीकानेर में सबसे प्रसिद्ध है, तो इसलिए हमने बनाया है।
1: आज आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है?
3: बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं ये, और मोटिवेशन मिलता है एक प्रकार का। यहाँ
4: मेरा नाम प्रिय श्रद्धा जोशी है
1: जी। आपने कौन सा चित्र बनाया, वो क्या कहता है?
4: मैंने राशि दीदी के साथ में मिलकर राव बिका जी की प्रतिमा को बनवाया था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को कला के देख कर बनाया कि मतलब यहाँ के लोग देखे तो प्रभावित हो कि कला के क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जो आज भी निःशुल्क लक्ष्मीनाथ जी जैसे प्रतिष्ठान जगह पर काम कर रहे हैं।
1: आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है?
4: सम्मानित किया जा रहा है वो तो मेरे को बहुत ऐसे प्रभावित रूप से लग रहा है कि मेरे को इस छोटी चीज़ के लिए भी सम्मानित किया है और मेरे को सम्मानित किया है, और मेरे को देखकर कुछ ऐसे लोग भी प्रभावित होंगे जो कला के क्षेत्र में जुड़े हुए भी नहीं हैं और कला की तरफ मतलब बढ़ावा देना है।
1: दूसरे कलाकारों को क्या कहना चाहोगे?
4: दूसरे कलाकारों को मतलब बड़ा ही मतलब मेरी तरफ से धन्यवाद होगा कि आज भी वो निःशुल्क इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसको देखकर आज भी लोग प्रभावित हो रहे हैं।
5: मेरा नाम हरिप्रकाश सोनी है।
1: सोनी जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ लक्ष्मीनाथ मंदिर में दीवारों पर चित्र बने हुए हैं और जो चित्रकार है उनका सम्मान किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
5: जी, सम्मान करना चाहिए, उन्होंने बड़ी मेहनत से केवल एक दिन में सुबह 11 बजे से 6 बजे तक ये एकदम तन्मय से एकदम काम किया है और अच्छा सराहनीय काम किया। बीकानेर की जो जो टॉप जगह थी उनका सबका चित्रण किया है उन्होंने।
6: और अब सुनिए बीकानेर पश्चिम विधानसभा के विधायक जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थे, श्री जेठानंद व्यास ने क्या कहा इस आयोजन के चलते।
1: दीवारों पर जो पेंटिंग की गई है वो बीकानेर की कला और संस्कृति और हमारी परंपरा को दिखा रहा है, और ये उससे भी बड़ी बात है कि आपके कर कमलों से आज उनका सम्मान किया जाना है, क्या कहेंगे पेंटिंग के बारे में और कलाकारों के बारे में?
7: माँ भारती के चरणों में नमन। मैं सबसे पहले तो श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास एवं पर्यावरण समिति उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम बीकानेर स्थापना दिवस पे किया, और उसके साथ साथ जिन चित्रकारों ने चित्र अच्छे अच्छे बनाए उनका सम्मान भी ये करने जा रहे हैं। देखा जाए तो हमारा बीकानेर कला के क्षेत्र में बहुत आगे है, चाहे संगीत हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे कैसी भी कला हो, उसमें सबसे आगे है बीकानेर। तो इस प्रकार बीकानेर में जो ऐसे हमारे प्रतिभावान जो लोग हैं उनका सम्मान होना ही चाहिए, उसको लेकर आज लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास पर्यावरण समिति जो ये कार्यक्रम रखा है मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इससे चित्रकार जो इस प्रकार का अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको भी एक उनका भी हौसला बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी को भी एक मार्गदर्शन के रूप में कार्यक्रम है, तो मैं पुनः इनका आभार व्यक्त करता हूँ।

ये था आज का बीकानेर दर्पण। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अब अनुमति दीजिए अगले अंक तक। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। राजस्थानी मिट्टी खुशबू, ऊंटों की रेतीली कहानियां, हवेलियों की नक्काशी और कविताओं का जादू और बीकानेर की समृद्ध विरासत से रूबरू करवाता हुआ एक आपका दर्पण सांस्कृतिक आत्मा। प्रस्तुति थी श्री महेश श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजन श्री अमित सिंह का था और वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय का। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। समय हुआ है रात्रि के 8:33। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उमेश मेहंदीरत्ता के द्वारा गाए कुछ लोकगीत।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढुला मारू चैनल है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम में उमेश मेहंदी रत्ता के द्वारा गाए कुछ लोक गीत।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल R.N. रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख C. Joseph विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें

0: कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे

0: एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ED ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में TV के प्रमुख विजय ने कांग्रेस VC के

0: India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India, Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:15 होते हैं। ये समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, पूरा 15 मिनट का समय आपके लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के लिए। श्रोताओं, कल 10 मई है यानी कि मातृ दिवस। सच तो ये है कि हर दिन मातृ दिवस होना चाहिए। मैं आपसे दिल खोल करके माँ के उन अनगिनत उपकारों की बात करना चाहता हूँ जिनका कोई हिसाब नहीं लगाया जाता। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस शुरुआत को और बेहतरीन बनाने के लिए सुनते हैं शैलेश लोढ़ा के द्वारा लिखी गई ये कविता। माँ, कल जब मैं उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं रहेगा, दो घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे, लगता है जब आऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा कि दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है, कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए रोता है कि सब कुछ तो है माँ, सब कुछ, जिस आज़ादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा वह सारी आज़ादी मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे कि मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ कर रहा हूँ जो कि मेरे जी में आता है। बात यह नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात तो इतनी सी, सुबह देर से उठूँ ना कोई टोकने वाला नहीं है, सुबह देर से उठूँ तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को देर से लौटूँ तो कौन टोकेगा भला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वह तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहती हूँ, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहती हूँ, बहाती हूँ आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए, खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तो खुश रहना बस यही दुआ है, और आज तमाम खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, गम यह नहीं है कि कोई यह सब खुशियाँ बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता, तू होती ना तो हाथ फेरती सर पे, हल्के से बाम लगाती, आवाज़ दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पर टीका लगाकर रुपया देती और कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा, बहन को सताता तो चांटे मारती, बीमार पड़ता से रो रो कर नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पापा की डांट का डर दिखाती, इसे नौकरी मिल जाए तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, यह सुनकर दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छूकर जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है,

सच है, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारों। मैं एक रोटी मांगता हूँ, वो हमेशा दो ही लेकर आती है। जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में जब माँ ने पूछा मैं हूँ किसके हिस्से में। घर की इस बार मुकम्मल तलाशी लूंगा, पता नहीं गम छुपाकर हमारे माँ बाप कहाँ रखते थे। एक अच्छी माँ हर किसी के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर माँ के पास नहीं होती है। जब जब कागज़ पर लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से उठ बोली हो गए तेरे चारों धाम। माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, उससे बड़ा भी हो तो भी बताना। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। माँ को देख मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में तीर्थ लिखा ही ना हो। मृत्यु के लिए बहुत रास्ते हैं, पर जन्म लेने के लिए केवल माँ है। माँ के लिए क्या लिखूँ, माँ ने खुद मुझे लिखा है। दवा असर न करे तो नज़र उतारती है माँ है जनाब, वो कहाँ हार मानती है।

चलो आज अपनी माँ को ज़रूर बताइएगा कि आप कितना उन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि माँ का प्यार कभी पुराना नहीं पड़ता, ये तो हर पल तरोताज़ा और शुद्ध होता चला जाता है। इसके साथ ही फिल्म संगीत का एक अंक यहीं ख़त्म होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे संस्कृति भारती हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।

कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे ये कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खांटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधि भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग,

0: साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर्ड नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ

में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिसेज जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से

0: भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली केंद्र में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
4: और मैं प्रांजल।
5: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
6: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से

0: अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है, मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया, फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ, बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इसपे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
1: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जैसे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन्स को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
2: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
5: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
5: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
4: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है, बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक।

0: शिक्षक श्री अजीत हल्दर।
1: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए। हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में, सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
2: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
0: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
2: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
0: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
0: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूं और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
0: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया, और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: नमस्कार।

0: भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। Rajkumar Majumdar is one of the most versatile santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: Aapke saath tabla par sangat kar rahe hain Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar apne karyakram ka aarambh raag जन सम्मोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santoor recital with raag जन सम्मोहिनी, presenting आलाप जोड़ एंड झाला। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू रूपक ताल and Madhyalaya. Drut composition is set to Teen Taal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग जनसम्मोहिनी। Continuing his recital, he now presents राग आभोगी। मध्य लय एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor Recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं हमारे शांतिकालीन सभा के प्रसारण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,

0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Nabin and several other leaders of BJP